होगा, निश्चित रूप से होगा भाई। ऐसा ही रचा है रचने वाले ने संसार, जो आपके लिए बुरा है ना वो किसी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। तो मैं कहता हूँ अच्छे और बुरे के इस वाद में भी मत पड़िए, दूरम उपाय है, जो आपके अनुकूल ना हो बस मौन होकर वहां से दूर हो जाइए, वो आपके लिए नहीं है, बस वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और अनुपयोगी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौन रहकर उससे दूरी बना लेना ये बुद्धिमानी है। मौन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सुमिल बात ना चलावे, जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय न मिले तब तक चर्चा ना की जाए, इस रस की तो कदापि न की जाए। सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के सबका

अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा, हो ही जाता है भाई। यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती। यही तो माया है, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है वो अनुचित होगा, और आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे। यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है? यही तो है, संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती? यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। परदोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते। आप में दोष दृष्टि ना हो, सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है जो भली गहे बुरी छाड़े, अविवेकी बोले भली बरी कछु ना समझे सब गहे सब छाड़े। अब आज तो संसार में ही रमे हैं हम, जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो, विश्वास रखो जिस

चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था। जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही जीवन है, इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई। एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर्मन को दूषित कर बैठता है। वो आवश्यकता से अधिक चाहता है, और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल बात जुगल बिहार की करे बिचारे, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाती को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रविदास जी कहने उनका संग करें, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करें, वार्ता करें, चिंतन करें, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाती को परस सुना करें। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, ना अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो पर लौन बिना सब फीक। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या? तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं, तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की। चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही। वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है, उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है।

इच्छा से प्रभु के विधान से जो मिले। राका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे, आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये लेने, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका बांका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। बोले क्यों? बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है, आप पुनः यहाँ आने का कष्ट ना करें। हम नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहु कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। राका बांका कहने लगे, प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है, हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं, सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे। बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहाँ ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है, पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना, अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? जूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करे तहां आचार करे, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करे तो शुद्धता का ध्यान रखे, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है, और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु ना माने। जो भोग श्रीजू को लागो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास न धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आचार भी करे कब? जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो। जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन।

0: पावन।
1: कह रहे रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीथ के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एक आदर्श स्कंद में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करे। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा, उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो झूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते हैं। श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है, भोर भये ते सांझ ढरे तक सेवा खोही ने हमारो। प्रिया जी की जो टहल है जो सेवा है ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है, और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। श्री जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर होए जाई, हे मैं आपसे कह रहा था बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है

ना हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विधि तो है अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए

0: पीतल हो।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता है, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है, वस्तुतः सम्मानित वही है समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। रविदास जी कह रहे हैं उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे। पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो? अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करते है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो, नानक कहते हैं संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। रविदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डारी। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया। वो जल गया कहां? सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमारी ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? मैंने वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो रविदास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल बालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया। तो कह रहे ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में न आवे कह रहे तिन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। देखो भाई यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना। यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गोसाई कृष्णदास जी को पद साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी के चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं, बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार अनेक तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं घट को नाही। दुर्दास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की लीला अनेक प्रकार की है, द्वारिका लीला है, मथुरा लीला है, ब्रज लीला है, उसमें भी सख्य लीला है, वात्सल्य लीला है, माधुर्य लीला है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई जहाँ जहाँ जाको मन लागे है ते सब नीके हैं, सब भले हैं, घट को नाही। कभी भी अपने मन में भावना है कि हम श्रेष्ठ भजन करते हैं, जो प्रभु का भजन करता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
5: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।

0: दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे। उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी के विचार।
1: दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अलग अलग लोगों से अलग अलग बात सुनेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए, पैसा बनाने के लिए कहां इन्वेस्ट करें? कुछ लोग आपको बोलेंगे इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। नीति आयोग भी कहता है कि 2030 तक आते आते $1 trillion का ये बिजनेस होने वाला है और GDP में 13% कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो मैक्सिमम लोग, आपको पुराने लोगों से मिलिए तो बोलेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, वो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और वो आपको बेस्ट रिटर्न देती है। कुछ और लोगों से मिलिए, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक्स में लगाइए, बॉन्ड्स में लगाइए, इंश्योरेंस में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, ये आपको बेस्ट रिटर्न देते हैं। कुछ लोग और आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक भी नहीं, बॉन्ड भी नहीं, इंश्योरेंस भी नहीं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर। आज से 60 साल पहले गोल्ड इतने का था, आज इतने का है, उस समय लिया होता तो आज रईस होते। कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट इन कम्युनिटीज विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट की अलग अलग परिभाषाएं आपको बताते हैं कि पैसा बनाने के लिए कहां निवेश करना जरूरी है। आखिरी में कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत शानदार बात आपसे करेंगे। वो कहेंगे सब छोड़ दीजिए, सब बेकार की बात है, इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन एजुकेशन विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। हाँ बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की पढ़ाई में निवेश करने से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। साथियों, आज मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, आपको बता देना चाहता हूं कि कहां इन

कहां होनी चाहिए? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको है, इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। आपको खुद को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना स्टॉक, ना बॉन्ड्स, ना प्रॉपर्टीज, ना चिल्ड्रन एजुकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की बेहद आवश्यकता है। इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, योर स्किल्स विल गिव यू द कंपाउंडिंग रिटर्न्स। अगर आप ये जानते हैं पर कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते। अगर आप जानते हैं और कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। और आखिरी में, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, सबसे बड़ा वेपन चलाते हैं। जानते हैं क्या? लिखता हूं, ये सब किस्मत का खेल है भाई, सब किस्मत का खेल है। वो रईस बन गया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। देखो, सोनू शर्मा को 10वीं में मात्र 50% नंबर थे, क्या जबरदस्त नोट छाप रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन कोचेस, वाइल अनसक्सेसफुल पीपल नोज एवरीथिंग। हमें सब पता है, नहीं चलता। अब हमने दुनिया देखी है, यह भी नहीं चलता। आपका तजुर्बा आपको जहां तक ला सकता था ले आया, आगे का सफर आपके तजुर्बे से नहीं, नॉलेज से होगा। आज का वीडियो आखिरी तक देखें, आपकी जिंदगी बदलने के लिए यह 12-15 मिनट का वीडियो काफी है। आज मैं आपको वो 5 सफल सिद्धांत बता रहा हूं जिन्होंने कुछ लोगों को शीर्ष तक पहुंचाया। ऐसी पिटारा आपके सामने आज खोलने वाला हूं जो ना आपने सुना होगा ना आपने सोचा होगा। आज की वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा तो मैं दावा दे सकता हूं कि आपकी लाइफ सुपर सेट हो सकती है। 5 सक्सेस प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्या करने से सफलता मिलती है? प्रिंसिपल नंबर वन बहुत शानदार है। क्या? नंबर 1, स्टार्ट योर करियर एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गाइस, बहुत सफल सिद्धांत मैं आज आपको दे रहा हूं। स्टार्ट योर करियर सुपर अर्ली, जितनी जल्दी हो सके अपना करियर स्टार्ट कर डालिए। वॉरेन बफेट ने अपना करियर 11 साल की उम्र में चालू किया। पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने 11 साल की उम्र में की, दुनिया के टॉप 5 रईस लोगों में से हैं। इसमें भी वो एक बात कहते हैं कि मुझे और जल्दी शुरू करना चाहिए था। जानते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम क्या है? मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, धूप लग जाएगी, सर्दी में जाएगा तो जुकाम लग जाएगा, अभी उम्र बड़ी छोटी है, खेलने खालने की उम्र है। ऐसी बातें मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को मिडिल क्लास कर देती है। सफल लोग जल्दी शुरू करते हैं। वर्जिन एटलांटिस के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने अपना करियर 16 साल की उम्र में चालू किया। जानते हैं दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क ने अपना पहला सॉफ्टवेयर महज 12 साल की उम्र में बेच दिया। और हमारे यहां 12-13 साल की उम्र खेलने खालने की उम्र होती है, जिस उम्र में दुनिया के दिग्गज लोग अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। मैं आपको ये प्रिंसिपल देना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड इफ यू आर अ टीनेजर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय अभी शुरू होता है अगर आपकी उम्र 16-17 साल है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कम से कम 5-8 साल लगेंगे। अगर आज आप 17 साल में हैं, 8 साल और जोड़ लीजिए, 25 साल में आप एक सफल इंसान होंगे। जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 2 आपको बता देना चाहता हूं, फेल क्विकली बट कीप मूविंग। फेल हो जाइए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है। फेल क्विकली, जल्दी फेल होइए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट कीप मूविंग, बढ़ते रहिए। मैं आपको एक सबसे अच्छी बात आपके लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग अर्ली बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 100% फेल होने वाले हैं। अरे आप बोलेंगे सोनू सर ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस दुनिया की, आप 100% फेल होने वाले हैं, सच है, क्योंकि आपने यात्रा बहुत जल्दी शुरू कर दी। अभी आपके पास ना स्किल है ना मार्केट का नॉलेज है, हो सकता है कोई मेंटोर भी ना हो जो आपको बचा सके। स्क्रैच से करोड़पति बनने का एक ही तरीका है, क्या? जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो कर लो, इस उम्र में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो करो और कन्वर्ट करो उसको एक्शन के अंदर। जब आप मार्केट में चैलेंज फेस करो तो मान लो कि मार्केट आपका टेस्ट दे रही है, डरना मना है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। फेल हो जाइए, जल्दी फेल होइए, बट कीप मूविंग। तीसरा सफल सिद्धांत आपको देता हूं, एजुकेट योरसेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी मिलेनियर एंड बिलेनियर, एजुकेट योरसेल्फ। निरंतर सीखते रहिए,
बुक्स

पढ़िए, इंटरव्यूज पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए सफल लोगों की, एनालाइज कीजिए आपकी लोग बाकी लोगों के बिजनेस, और जानते हैं मजे की बात क्या है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन बहुत चीपर है या एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको इस वीडियो को देखने का। फोकट में देख रहे हैं कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, दुनिया में सबसे सफल बढ़िया ज्ञान फोकट में मिल जाता है दोस्त, बस अफसोस है कि हम सीखते नहीं है। 300 से ज्यादा वीडियो हैं हमारे चैनल के ऊपर, जरूर सब्सक्राइब करिए, 300 से ज्यादा फ्री वीडियो जहां पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं, एजुकेट योर सेल्फ, सीखिए, केस स्टडी से सीखिए, सफल लोगों की जीवनी से सीखिए, और सारा का सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी जिंदगी में लगाइए, जहां मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस आज आपके YouTube के अंदर है, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे अपन सफल हुए। इफ यू वांट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली, एक ही जिंदगी है। इन्वेस्ट इन बुक्स, रिकॉर्डिंग्स, हर चीज जो आपकी स्किल को बिल्ड करे, और जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे ना, उतने ज्यादा समय तक उन स्किल्स को यूज कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे उतने ज्यादा समय तक स्किल्स को यूज कर सकते हो। कार अगर आपने 18 साल की उम्र में सीख ली और आप 80 साल जीते हैं तो 62 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कार 60 साल की उम्र में सीखी और 80 साल तक जिए तो उसका फायदा सिर्फ 20 साल उठा सकते हैं। Become a self-learner. Learn about time management, how to talk. हर टॉपिक पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, सीखिए और आगे बढ़िए। प्रिंसिपल नंबर 4 आपको बता देना चाहता हूं, सांसें थाम के बैठिएगा क्योंकि आपको ये डेंट करने वाला है, आपको चोट देगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा कि सोनू सर आज क्या बताने के मूड में आए हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ। यस बॉयज एंड गर्ल्स, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गुर्बत और गरीबी से निजात पाने के लिए कीमत आपको देनी ही पड़ेगी, यह कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल एक रॉकेट की तरह जिसका सबसे ज्यादा फ्यूल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने में लग जाता है, आपके जो शुरुआती साल हैं उसमें आपको सोशल लाइफ को बायकॉट करना पड़ेगा। जी हां, 40 घंटा अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटा ही काम करते हैं तो यह सिर्फ आपके खाने की पूर्ति करेगा, आपके बिलों का भुगतान करेगा, दैट्स इट। अगर आप 40 आवर्स अ वीक मेहनत करते हैं तो सिर्फ बिल भुगतेंगे आपके, आप एक आम जिंदगी जिएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स 40 से बढ़कर 100 हो जाते हैं, अगर एक हफ्ते में आप 100 घंटा काम करते हैं, यह आपको लाइफस्टाइल देगा, ये आपको जबरदस्त लाइफ देगा और आपको एक अमीर लाइफ को फील करवाएगा अगर आप 100 घंटे काम करते हैं। लेकिन 100 घंटे काम कब करेंगे? जब सोशल लाइफ को बायकॉट करेंगे। कोई फालतू की दोस्ती नहीं, फालतू की रिश्तेदारी नहीं, कहीं फालतू का आना नहीं, फालतू का जाना नहीं, इधर उधर की गॉसिप में खोपड़ी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना अपने करियर और अपने गोल के ऊपर। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि ये कीमत ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। आप भी बाकी लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप डिसाइड करिए कि आप कितने घंटे रोजाना अपने मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी की तैसी कराकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 7-7, 8-8 घंटे के आवर्स हैं, कैन यू बिलीव इट। दुनिया भर का अनप्रोडक्टिव काम लोग बाग करते हैं, कभी इसकी शादी में जाना है, कभी उसके रिश्तेदारी में जाना है, कभी फालतू फंड का गॉसिप करना है, चार दोस्त बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। 24 घंटे खत्म होने के बाद, वो 24 घंटे दुनिया भर की संपदा देने के बाद भी आपके पास नहीं आते। आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा सोशल लाइफ और फोकस करना पड़ेगा अपने करियर के ऊपर। पांचवी सबसे खतरनाक चीज, सराउंड यूर सेल्फ विद हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। अपना वातावरण सफल लोगों के साथ बनाइए।
कुछ भी ऐसा करिए कि आपके आजू बाजू में वो लोग हों जो आपको इंस्पायर कर सकें। कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए, कुछ ऐसी एसोसिएशन तलाशिए जहां पर आपके आजू बाजू के लोग बड़ी बात करने वाले हों, बड़े सपने देखने वाले हों, बड़े आइडियाज हों जिनके पास, और अर्ली बिगिनर्स हों जिनके पास गीता ज्ञान के नाम पर कुछ ना हो लेकिन एनर्जी सुपर फास्ट हो। इन सबकी एसोसिएशन में आप कमाल कर जाएंगे। बींग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर एंड बींग विद अ लूजर विल मेक यू अ लूजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पांच प्रिंसिपल अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर गए, मैं दावा दे सकता हूं ये साल आपकी जिंदगी का बेहद खूबसूरत साल हो सकता है।

0: रॉकी भाई जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है तो फॉलो करो KGF हेल्थ टिप्स
1: कोलार गोल्ड फील्ड।
0: नहीं, KGF मतलब कीप जिमिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी।
1: ऐसे ही सिनेमैटिक हेल्थ टिप्स जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को छटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 6.6 की धुन पे नाचना।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
0: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
0: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।
1: बसंती इनके सामने मत

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

इस शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर अब टाइम हो गया है वेदर अपडेट का। और अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो 32 डिग्री जाने वाले, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए तो 22 डिग्री है आज। और विंड स्पीड आपको मिलने वाली है

23 इसी के साथ अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 51% और साथ ही प्रिडिक्शन है थंडरस्टॉर्म की, यानी कि बारिश आ सकती है। मौसम वैसे भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखिएगा और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो अर्ज किया है।
4: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
3: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
4: इरशाद,
3: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
4: तुम्हारे नंबर पे?
3: हाँ जी।
4: अच्छा,
3: और उन्होंने पूछा क्या?
4: क्या पूछा?
3: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
4: क्या बात कर रहे हो?
3: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
4: अच्छा,
3: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
4: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
3: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
4: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
3: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
4: बाय।
3: सुनो तो, कहाँ चली?
4: बाय।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। जब गाड़ी में बजे आरजे अंजलि की आवाज, समझो मॉर्निंग हो गई एकदम फर्स्ट क्लास।
3: बाकी सब फर्स्ट क्लास है।

हंसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मन्नू दास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: इस शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पर्सनालिटी का जिन्होंने हर रोल में वार्मथ और रियलिज्म का तड़का लगाया और अपने फैंस के दिलों तक पहुंचे। आज हैप्पी वाला बर्थडे अनंग देसाई का, यानी कि अनंग की अगर बात की जाए, इन्होंने फिल्म, टेलीविजन और थिएटर तीनों मीडियम्स में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई और इतना ही नहीं, उन्हें ऑडियंस ने खास तौर पर टीवी शो खिचड़ी में एक मेमोरेबल रोल के लिए बहुत प्यार दिया है। और अगर बात करें ना अनंग की, तो क्या इन्हें स्पेशल बनाता है, नेचुरल और रिलेटेबल एक्टिंग करते हैं, सपोर्टिंग रोल में भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़कर जाते हैं, किस तरह से फैंस का दिल जीता जाता है इन्होंने ये भी बता दिया। तो भाई आज हैप्पी वाला बर्थडे, चलिए विश करते हैं रेडियो महारानी विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। आप ऐसे ही हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 एफएम कच हटके।
1: Carnival, the last ride, King.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

इस शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। यानी कि जब सब लोग दूर भागते हैं ना, तब ये लोग आग की तरफ बढ़ते हैं, और इसीलिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एक दिन जो उन ब्रेव हीरोज को सल्यूट करता है जो अपनी जान रिस्क में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाते हैं, यानी कि हमारे फायर फाइटर्स। और क्या इन्हें स्पेशल बनाता है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इमरजेंसीज में सबसे पहले पहुंचते हैं। सेकंड थिंग, फायर एक्सीडेंट्स और डिजास्टर से लोगों को रेस्क्यू करते हैं, और इतना ही नहीं हाई रिस्क सिचुएशंस में भी काम रहते हैं। तो भाई इनकी रिस्पेक्ट करना तो बनता है ना, इसीलिए ये सिर्फ जॉब नहीं, सर्विस और ब्रेवरी का सिंबल है। तो आज का दिन अकेले नहीं आया, आज का दिन एक मैसेज लेकर आया है। फायर सेफ्टी रूल्स फॉलो जरूर करें, इमरजेंसी नंबर जरूर याद रखें, और रियल लाइफ हीरोज को अप्रिशिएट जरूर करें। तो इसीलिए थॉट ऑफ द डे तो बनता है ना। तो भाई आज का थॉट ऑफ द डे है, नॉट ऑल हीरोज वेयर्स कैप, सम वेयर हेलमेट। सो इसी के लिए आज का थैंक यू बनता है इन फायर फाइटर्स के नाम, जो हमारी जिंदगी अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती समझते हैं। तो चलिए फिर अप्रिशिएट करते हैं इन्हें और सेलिब्रेट करते हैं आज का दिन विद दिस ट्रैक, और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
3: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहे हैं आप, सुनो तो
3: इरशाद।
2: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
3: तुम्हारे नंबर पे?
2: हाँ जी।
3: अच्छा,
2: और उन्होंने पूछा क्या?
3: क्या पूछा?
2: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
3: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
3: अच्छा,
2: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
3: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
2: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
3: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
2: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
3: बाय।
2: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
3: बाय।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

कभी आपने सोचा है कि हमारे वर्ड्स किसी को कितनी बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं? इसीलिए कहा जाता है काइंडनेस चूज करना जरूरी है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है एंटी बुलिंग डे, यानी कि एक दिन जो बुलिंग के खिलाफ अवेयरनेस स्प्रेड करता है और साथ ही रिस्पेक्ट, एम्पैथी और काइंडनेस को प्रमोट करता है। अगर बात करें बुलिंग की, तो सबसे पहले आइए चलिए जानते हैं कि आखिर बुलिंग होता क्या है। अगर बुलिंग की बात करें तो इसका कोई एक तरीका नहीं है। अगर आप किसी को वर्बली हर्ट करते हैं, वो भी बुलिंग का पार्ट है। किसी को फिजिकल या फिर इमोशनल हार्म करना, वो भी बुलिंग के अंदर आता है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन ट्रोलिंग या साइबर बुलिंग, ये भी बुलिंग का पार्ट है। तो याद जरूर रखिए, रिस्पेक्ट एवरीवन, किसी का मजाक ना उड़ाएं। अगर बुलिंग देखें तो स्टैंड जरूर लें और बुलिंग के खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाएं। इसी के साथ बस कहना चाहती हूँ, बी काइंड बिकॉज यू नेवर नो व्हाट समवन इज गोइंग थ्रू, और छोटी सी काइंडनेस किसी की लाइफ बदल सकती है। तो बस आज इसी थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। बस यही कहना चाहेंगे, स्प्रेड लव, स्प्रेड केयर और हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कच्छ हटके।

0: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ इस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।

शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। मॉर्निंग एक्सप्रेस तो चल ही रहा है लेकिन इसी के साथ जो एक और चीज चल रही है वो है गर्मियाँ। गर्मियाँ इतनी ज्यादा है कि कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन कहा जाता है ना दिल्ली है दीवारों की दिल्ली, और दिल्ली ने ना कर दिखाया, यानी दिल्ली के स्कूल्स ने एक इनिशिएटिव लिया है और इनिशिएटिव ये है कि अब दिल्ली के स्कूल्स में की जाएगी वाटर बेल इंट्रोड्यूस, यानी कि स्कूल्स के लिए एक नया थॉटफुल स्टेप ले लिया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें ना तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। हर स्कूल्स के अंदर 45 टू 60 मिनट्स के अंदर एक बेल रिंग होगी जिसका एक मोटिव रहेगा कि बच्चे फटाफट से पानी पी लें, सो दैट कि बच्चों को बेल बजते ही याद आ जाए कि अब पानी पीने का समय हो गया है। और अगर इसके मोटिव की बात करें ना तो इसका सिंपल सा मोटिव है कि डिहाइड्रेशन से बच्चों को बचाना है, बिकॉज अगर गर्मी की बात करें एक्सट्रीम हीट में डिहाइड्रेशन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर बच्चों की बात की जाए, खासकर बच्चे अक्सर पढ़ाई में पानी पीना भूल जाते हैं, ऐसे में अगर इस तरह की बेल रिंग होगी ना तो उन्हें एक्साइटमेंट भी होगी कि अच्छा पानी पीना।

है और इस तरह से उनका हाइड्रेशन भी पूरा हो पाएगा और उनको किसी भी तरह का फटीक नहीं होगा, कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा। तो भाई बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है। तो भाई एक मैसेज भी है, हाइड्रेशन इज नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल। सो यही कहना चाहूंगी, ये स्टेप सिंपल है लेकिन बच्चों की हेल्थ के लिए काफी इम्पैक्टफुल है। सो माय डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, आप भी इस चीज का ध्यान रखें, पहले पानी फिर पढ़ाई। और इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: जहां सुबह की शुरुआत होती है फिटनेस और हेल्थ टिप्स के साथ। सुनना ना भूलिए मॉर्निंग एक्सप्रेस आरजे अंजलि के साथ।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहे हैं आप, सुनो तो
2: इरशाद।
1: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
1: हाँ जी।
2: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
2: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कई बार ना हम लोग इतना ज्यादा शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि खुद का नुकसान करा लेते हैं। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई जिस शॉर्टकट की मैं बात कर रही थी वो है शॉर्टकट से जॉब मिलेगी और बस इसी के चलते ना आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। दरअसल एक शॉकिंग केस फिर से आ गया। एक फ्रॉडस्टर ने खुद को मिनिस्ट्री से कनेक्टेड बताकर लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलाने का प्रॉमिस करके उनके अच्छे खासे पैसे ठग लिए। अगर इस फ्रॉड की बात करूं, बेसिकली इस फ्रॉड में होता क्या है, सबसे पहले तो आपसे फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि आपकी जॉब पक्की है, आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड सेकंड थिंग, आपको ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि अब तो आपकी जॉब लग ही जाएगी। एंड साथ ही आपको ट्रस्ट दिलाकर लाखों रुपए आपसे ले लिए जाते हैं। और अगर इस पर्टिकुलर फ्रॉड की मैं बात करूं तो अब तक 40 लाख रुपए तक का स्कैम हो गया है लोगों को फेक प्रॉमिसेस करके। अब आप सोच रहे हैं कि पता कैसे लगाएं क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आइए जानते हैं कि किस तरह से आपको इस फ्रॉड में फंसाया जा सकता है। पहले तो फ्रॉडस्टर आप तक आएगा, आपको गवर्नमेंट कनेक्शन के नाम पर बहुत सारे स्टोरीज बताएगा, बहुत सारे इंसिडेंट्स बताएगा जहां पर वो आपका ट्रस्ट जीत लेगा। साथ ही आपके साथ एक अर्जेंसी क्रिएट की जाएगी सो दैट कि आप सोच ना सके ना समझ सके कि ये एक्चुअल में फ्रॉड है या जेन्युइन सोर्स है। फेक पेपर्स आपको दिखाए जाएंगे, आपका ट्रस्ट जीत लिया जाएगा। तो इस तरह के फ्रॉड से बेसिकली आपको बचना कैसे है? किसी भी जॉब के लिए पैसे ना दें क्योंकि कोई भी जॉब वैकेंसी आपसे पैसे नहीं लेती है। एंड सेकंड थिंग, ऑफिशियल वेबसाइट और प्रोसेस पर ट्रस्ट जरूर करें। डॉक्यूमेंट्स और ऑफर्स वेरीफाई जरूर करना, साथ ही टू गुड टू बी ट्रू ऑफर से सावधान रहें क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज आपको इस तरह की प्रॉमिसेस नहीं करती है कि आप उन्हें पैसे देंगे तभी आपको जॉब मिलेगी। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत वाली जॉब ही सेफ होती है, शॉर्टकट वाली जॉब नहीं। सो शॉर्टकट को साइड कर दीजिए और अपने अकाउंट के साथ किसी भी तरह का रिस्क ना लीजिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता
0: है। अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो गई और आने वाले टाइम पर तो ना गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो भाई ऐसे में क्या करना है, ऐसे में गर्मी में हार्ट हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है आपको। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूं आरजी अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहां आज मैं आधुनिक फिटनेस वाले फंडे के साथ। और अगर गर्मी की बात करें ना, तो सिर्फ गर्मी नहीं बॉडी के सिग्नल को भी समझना जरूरी है। यानी अगर गर्मियों की बात करें ना, तो हमें लगता है कि पसीना और थकान ना बहुत कॉमन है, बिकॉज मौसम ऐसा है, तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो ऐसे मौसम में ना थका थका फील होना बहुत ही कॉमन है। लेकिन आपको पता है, कभी कभी ये साइन ना बहुत ज्यादा डीपर होता है, यानी कि एक डीपर प्रॉब्लम की तरफ हमें इशारा कर रहे होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे साइंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि बॉडी में क्या होता है जब आपको बहुत ज्यादा पसीना या फिर थकान महसूस हो। सबसे पहले तो एक्सेस स्वेटिंग एक साइन है डिहाइड्रेशन का। एंड सेकेंड थिंग, आपका ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट हो सकता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी आपको लगे ना कि आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ गर्मी की वजह से है। और इतना ही नहीं, जब बहुत ज्यादा पसीना आपको आता है, बहुत ज्यादा थकान आपको फील होती है ना, तो ये साइन हो सकता है कि आपके हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इन दिनों। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इस बात का। और साथ ही हार्ट बीट में जब आपको चेंज फील होना, तो आपको जरूर एक बार डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत है। बेसिकली कुछ साइन है जो हमें अक्सर बहुत कॉमन लगते हैं, लेकिन अगर टाइम पर ध्यान दिया जाए तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। सो जब भी कुछ ऐसे साइन होते हैं ना, तो लोग अक्सर समझते हैं कि नॉर्मल हीट इफेक्ट है, लेकिन इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये रिस्की हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको करना क्या है, डॉक्टर को विजिट करने से पहले सबसे पहले आप कर सकते हैं पानी और फ्लूइड सबसे ज्यादा लेना शुरू कर दें। साथ ही डायरेक्ट धूप से बचें। जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा हीट वेव्स का टाइम है, तो बाहर जाना अवॉइड करें पूरी तरह से। और इतना ही नहीं, लाइट और हेल्दी फूड खाएं, सो दैट कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। और साथ ही बॉडी के अनयूजुअल जितने भी सिग्नल्स है ना, उन्हें कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। तुरंत डॉक्टर को विजिट कीजिएगा, गर्मी को लाइटली मत लीजिएगा, हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

और शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आशीषी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल तो अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का, सुबह 7 बज आई थी एंड बातें करते करते कब वक्त खत्म हो गया पता ही नहीं चला। 3 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ आए, तो अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। कल फिर से मिलेंगे एक नई वाइब के साथ, एक मस्ती के साथ, एंटरटेनमेंट की डबल डोज के साथ, साथ ही बहुत सारी अपडेट्स के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर स्पेशल सॉन्ग जो है खास आपके लिए, बने रहे रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन
2: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
3: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

0: स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं फरीदाबाद की गलियों से। और आज फरीदाबाद की गलियों से शुरुआत कर रहा हूं मैं, यानी कि सुबह आ गया हूं। मॉर्निंग किसी वजह से आ नहीं पाया, डोंट वरी, मैं आप सभी के साथ आ चुका हूं तो अपडेट्स तो दूंगा, मगर अपडेट देने के लिए मेरे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है पार्थ। तो पार्थ, क्या कुछ हो रहा है फरीदाबाद में?
1: बिल्कुल गौरव, फरीदाबाद में एक्चुअली आज बहुत कुछ नया उभर कर आ रहा है। जैसा कि सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो निगम ने ग्रीन बेल्ट से हटाया है अतिक्रमण।
0: हाँ, ये तो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मतलब तुमने भी देखा होगा कि काफी सारी एरियाज में ये कार्रवाई चल रही है जहां पर लोगों ने घर के आगे एरिया अगर हथियार रखा था, ग्रीन बेल्ट बेसिकली अगर हथियार रखा था तो उसको तोड़ा जा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: और वहां पर लोगों ने कुछ ने पार्किंग बना रखी थी, कुछ ने गार्डन बना रखा था। जहां तक गार्डन की बात है, आई गेस ठीक है, गार्डन तो चलता है,
1: गार्डन तो बिल्कुल चलता है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने पार्किंग क्रिएट करी हुई है उसकी वजह से काफी ज्यादा जाम वगैरह
0: जाम हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मुंह से, हम लोग इंसान है बाबा, हमसे ही तो मिस्टेक्स होगी और किससे होगी। तो जाम हो जाता है और जाम की वजह से लोगों को दिक्कत होती है। तो अभी देखो 3 नंबर में ये कार्रवाई कर दी गई है, सेक्टर 21 में कार्रवाई कर दी गई है और भी काफी सारी जगहों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। तो सरकार का सिंपल सा ये कहना है कि हम लोग नोटिस लगा के जा रहे हैं, आप लोग खुद से हटा लीजिए, नहीं हटा रहे तो हमारे पास पीला पंजा तो है ही। तो चलिए, अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलेंगे। और हाँ, आज फरीदाबाद की गलियों से मैं, अगर आपको फरीदाबाद में किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9654896896। मेरे साथ है

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फरीदाबाद की गलियों से, और मैं हूं आपका दोस्त पार्थ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आरजे गौरव। और आरजे गौरव यार, मैं आपको एक बात बताऊं, सीरियसली बहुत खुशी की बात है कि बाटा रेलवे पुल जो है उसकी दूसरी लेन की मरम्मत भी कम्प्लीट हो चुकी है एंड अब वो वर्किंग है सभी लोगों के लिए।
1: और जैसे कि हम लोगों ने सभी ने देखा, फरीदाबाद में ट्रैफिक जैम की सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और पहले बोला जा रहा था 15 अप्रैल, फिर 20 अप्रैल, फिर 25, फिर 30, और धीरे धीरे डेट आगे बढ़ रही थी जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। तो वो फाइनली बाटा पुल पूरी तरह से मरम्मत ठीक हो चुकी है। और अगर आप लोग इस टाइम हमें सुन रहे हैं और आप लोग बाटा पुल को अवॉइड कर रहे थे, तो इस टाइम आप लोग बाटा पुल की तरफ से जा सकते हो। और मैं पार्थ जैसे पूछना चाहूंगा यार, कहां कहां पर तुम्हें लगता है कि जाम लगता ही लगता है?
0: सबसे बड़ा जाम का जिसको हब कह सकते हैं, वो मेरे मायने में तो यही है कि एक बाटा का पुल है, दूसरा नीलम का पुल है, यहां पर सबसे ज्यादा जाम लगता है। तो अब बहुत ही अच्छा, ये हमारे लिए फायदेमंद चीज है कि बाटा के पुल की मरम्मत कंप्लीट
1: हो चुकी है। और इसी के साथ साथ मैं सभी पब्लिक को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी कहीं पर अगर ट्रैफिक में फंसे हैं तो आप लोग हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप लोग। तो तब तक के लिए रेडियो महारानी आप लोग सुनते रहिए, फरीदाबाद की गलियों से और भी बातें होती रहेंगी। तो अभी फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं,
1: काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: रेडियो महारानी 89.6 पर फरीदाबाद की गलियों से मैं आप सभी का स्वागत है। और फरीदाबाद की गलियां कुछ ऐसी हैं कि अब ये गलियां थोड़ी सी चौड़ी होने वाली है, क्योंकि गुड़गांव से फरीदाबाद और फरीदाबाद से नोएडा RRTS यानी कि नमो भारत RRTS कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। देखो मैं अकेला नहीं हूँ इस टाइम स्टूडियो में, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पार्थ, और पार्थ बताएगा कि ये टोटल कितने किलोमीटर लंबा है भाई।
1: ये टोटल 64 किलोमीटर लंबा रहने वाला।
0: ओके, तो ये कब तक चालू हो जाएगा कुछ RRTS जो नमो भारत चलने वाली है?
1: खुशखबरी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2031 तक चालू हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने प्लान किया है।
0: प्लान तो उन्होंने कर दिया है और होपफुली हो भी जाए 2031 तक। तो अभी यार मैं अगर बात करूँ टाइम की, तो अभी हमें कितना टाइम लगता है, और अगर ये भारत कॉरिडोर चल जाएगा तो तब कितना टाइम लगेगा हम लोगों को?
1: देखो अगर अभी देखा जाए तो हमको 2 घंटे नोएडा पहुंचने में लग रहे हैं, और अगर चालू होने के बाद देखा जाए तो आप मानोगे नहीं, सिर्फ 40 मिनट लगने वाले हैं यहाँ से नोएडा जाने।
0: तो नोएडा पहुंचने में सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। वहीं पर अगर बात करी जाए गुड़गांव से फरीदाबाद आने में, जैसे कि जो लोग फरीदाबाद आते हैं गुड़गांव से घूमते हुए, तो उनको पता है कि ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है, मगर जब ये RRTS चालू हो जाएगा तब कितना टाइम लगेगा हम लोगों को?
1: मात्र 20 मिनट। जी हाँ, आप सभी ने भी सही सुना, और गौरव भाई आपने भी सही सुना, मात्र 20 मिनट लगने वाले।
0: तो 20 मिनट हम लोगों को लगेंगे गुड़गांव से फरीदाबाद पहुंचने में। और इसके अलावा देखो रूट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो एक बार पार्थ हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनको रूट बता दो कि कैसा रूट होने वाला है हमारा गुड़गांव से फरीदाबाद, फिर फरीदाबाद से नोएडा।
1: बिल्कुल मेरे सुरीले शुरू में आप सुनिए ये रूट। इफको चौक से शुरू होने वाला है, मिलेनियम सिटी सेंटर कवर करते हुए पहुंचेगा सैनिक कॉलोनी, NIT और बाटा चौक के एरियाज को भी कवर करेगा। उसके बाद जाने वाला है नोएडा और ग्रेटर नोएडा।
0: ठीक है, नोएडा ग्रेटर नोएडा पहुंचेगा, फिर वहां पर कौन से सेक्टर के साथ जाके जुड़ेगा?
1: वहां पर ये जाकर जुड़ने वाला है सेक्टर 142 और 168 में।
0: तो मतलब एक तरह से हम सभी के लिए फायदे वाला रूट होने वाला है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमारे साथ इस RRTS में ट्रैवल करने के लिए? नंबर हमारा 9654896896। तो इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप लोग। फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम में आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत है। शो है फरीदाबाद की गलियों से और मैं हूं आपका दोस्त पार्थ। मेरे साथ हैं आपके होस्ट आरजे गौरव। तो यार कुछ नई चटपटी कुछ बात बताओ, अभी जैसे ट्रेनों की बात चल रही थी तो उससे रिलेटेड कोई अपडेट है क्या?
1: बिल्कुल, जितने भी यात्री मुझे सुन रहे हैं, यानी कि यात्री वाले, गाड़ी वाले भी यात्री हो सकते हैं और दूसरे ट्रेन वाले भी यात्री हो सकते हैं। देखो, हम लोग अक्सर EMU में चढ़ते हैं, मगर अब नई दिल्ली से तो नहीं मगर पुरानी दिल्ली से चालू होने जा रही है फरीदाबाद के रूट पर नई मेमू ट्रेन, वैसे MEMU कहते हैं इसे, और ये आएगी पुरानी दिल्ली से फरीदाबाद और फरीदाबाद से फिर से पुरानी दिल्ली जाएगी। और अगर टाइमिंग की बात करें तो पार्ट एक बार टाइमिंग बता दो।
0: टाइमिंग जहां तक मुझे अंदाजा है इसकी टाइमिंग रहने वाली है 10:30 से 11:45 तक और फिर उसके बाद दोपहर में 2:00 से 3:45।
1: तो मतलब सिंपल सा है कि 10:30 पर ये चलेगी पुरानी दिल्ली से और फरीदाबाद पहुंचेगी 11:45 पर, फिर फरीदाबाद से चालू होगी 2:00 और पहुंच जाएगी पुरानी दिल्ली 3:45। बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है इससे। ऑलमोस्ट अगर कैलकुलेट किया जाए तो ऑलमोस्ट आई गेस 1000 से भी ज्यादा है ना, ऐसे कुछ नंबर है ना पार्थ?
0: कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं, जो रफ एस्टिमेट अगर मैं तुमको बताऊं गौरव, तो 1300 से अधिक यात्रियों को इसमें सुविधा मिलने के चांसेस है।
1: और चांसेस है, और इसी के साथ साथ बता दूं ये ट्रेन के मुख्य स्टॉपेज कौन कौन से रहने वाले हैं। पुरानी दिल्ली से चलेगी तो सदर बाजार रुकेगी, फिर नई दिल्ली, फिर शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, हजरत निजामुद्दीन, ओखला, तुगलकाबाद और फिर फरीदाबाद, और जब यहाँ से जाएगी तो फिर उल्टा समझ लो। और बस ये ही है कि हाँ, फायदा होने वाला है जितने भी लोकल ट्रैवल करते हैं ना उन लोगों को। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी से हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे आप सभी से फिर से कल दोपहर भी नहीं सुबह ही बोल सकते हैं, 10 से 11 फरीदाबाद से की गलियों से। मैं हूँ गौरव और मेरे साथ है पार्थ। तो चलिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर.
5: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं.
6: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला.
5: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें. किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें. बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें. मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें. हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें.
7: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM. तो अब से बी सेफ, बी अवेयर.

इसी खूबसूरत गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। और दोस्तों आज फिल्मी गलियारे से बहुत सी चर्चाएं करने वाला हूँ। कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा के गलियारों में रिलीज होने जा रही हैं, कुछ का होगा आगाज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो कहीं होगा धमाल सिल्वर स्क्रीन पर, नई जोड़ियों के साथ रोमांटिक कहानियां तो कहीं होगी कॉमेडी की वाइब, तो कहीं होने वाला एक्शन और थ्रिल का डबल धमाल, तो कहीं साउथ इंडस्ट्री के साथ लेकर के आ रहे हैं सस्पेंस भरपूर कहानियां, तो कहीं है टीवी सितारों का जलवा। और आगे बढ़ते हुए ले चलूंगा आपको हॉलीवुड के गलियारों में जहां आपको बताऊंगा एक्शन थ्रिल से भरपूर नई वेब सीरीज और कहानियों के बारे में। ये सारी चर्चाएं करूंगा सिनेमा के गलियारे से लेकर, ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से वेलकम बैक है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। और दोस्तों अब बात करते हम यहाँ पे सबसे पहले ओटीटी की रिलीज हैप्पी पटेल, जो कि खतरनाक जासूस की कहानी है। इसके बारे में बताता हूँ, जिसमें डायरेक्टर के साथ साथ लीड किरदार में भी नजर आने वाले हैं वीरदास। बात करते हैं हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस, जो कि इंडिया का पहला स्पाई कॉमेडी फिल्म बनाने का दावा करती है, जिसमें वीरदास एक क्लम्सी ब्रिटेन वाले बैकग्राउंड वाले लेकिन भारतीय जॉन डू जैसे जासूस की भूमिका में सबके सामने आए। इस कहानी में इनके साथ मोना सिंह, मिथिला पालकर, शरीफ हाशमी और काफी सारी स्टार कास्ट देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ यहां पे आमिर और इमरान दोनों स्पेशल अपीयरेंस में भी नजर आने वाले हैं। इंतजार रहेगा ओटी पर इसकी रिलीजिंग को लेकर, जहां फिल्म 2026 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उतनी खरी नहीं उतर पाई, इसलिए इसको ओटी प्लेटफॉर्म पर हाथ आजमाने के लिए यहां पे उतारा गया है। देखते हैं कितना प्यार बटोरेगी, बाकी ऐसी भी चर्चाएं चलती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक
1: all night.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार यानी कि पवन सिंह के बारे में, जहाँ तेलुगु एक्शन ड्रामा कहानी डकैत के गाने टच बड़ी को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं, जहाँ इस गाने में बॉलीवुड साउथ और भोजपुरी म्यूजिक का एक साथ जोड़ नजर आया है। आदि विशेष और मृणाल ठाकुर वाली लीड किरदारों के साथ डकैत का ये दूसरा गाना है जिसको रिलीज किया गया, जिसका टोन हाई एनर्जी और क्रॉस कल्चर के तरीके से इसको दर्शाया गया। गाने को पवन सिंह और जॉनिटा गांधी ने गाया है और लिरिक्स वही श्रीवास्तव ने लिखे।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6

वेलकम बैक है आफ्टर दिस सॉन्ग और आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी बात करते हैं। अब यहाँ पे रश्मिका मंदाना कई बड़े बजट फिल्म प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रही हैं, जिसमें कॉकटेल का सीक्वल, रानावई, पुष्पा का थर्ड पार्ट और एनिमल पार्क मायसा जैसी फिल्में शामिल हैं। यानी कि 2026 के लिए उनकी लाइनअप काफी ही धमाकेदार है। कॉकटेल सीक्वल की बात करें, 2012 की हिट कॉकटेल कहानी में अपना किरदार निभाते नजर आएंगी, जहाँ शाहिद कपूर, कृति सेन और रश्मिका मंदाना की तिगड़ी कमाई करेगी। वहीं रानावली एक एक्शन रोमांस थ्रिलर कहानी है, जिसमें रश्मिका अलग अलग अवतार वाली मजबूत विलन किरदार में सबके सामने आने वाली पुष्पा थ्री का इंतजार तो हर कोई कर ही रहा है। अयु अर्जुन लीड कर रहे हैं और रश्मिका फिर से पुष्पा फ्रेंचाइजी में बैक टू बैक देखने वाली एनिमल पार्क एक बॉलीवुड के ऐसे एक्शन ड्रामा वाले जूमर में बनी फिल्म, जिसमें पैन इंडिया तरह के प्रमोट की जाने वाली है, जिसमें रोमांस के साथ साथ कुछ इंटेंस एक्शन सीन्स में भी नजर आएंगे। इंतजार रहेगा इन कहानी की रिलीजिंग का।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके।
3: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
4: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
3: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
4: प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है।
3: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
4: आवारा हूँ आवारा।
3: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

हाँ जी, वक्त हो चला है अब फिल्मी गलियारे में सिनेमा के कलंदर की बातें करने का। जी हाँ, यहाँ पे एक ऐसी कहानी रिलीज हुई 80s के दौर की जो मल्टी स्टार, जहाँ दो बड़े सुपरस्टार्स एक साथ नजर आए। इन दो स्टार्स ने ऐसा कमाल किया कि हर कोई इनकी कहानी, इनकी इस डुअल जोड़ी की तारीफें करता नजर आए। फुल मसाला एक्शन, ड्रामा और एंटरटेनमेंट से भरपूर ये कहानी, जो कि हर किसी को एंटरटेन करती नजर आई और 80 के दशक की वो कहानी बन गई, जिसे कहानी को देखना, कहानी के गाने सुनना और इस जोड़ी की तारीफें करना हर जगह बस यही चर्चा है इस कहानी के बारे में। तो फिल्मी कैलेंडर में ऐसी ही कहानी की आज मैं बात करने वाला हूँ। अब कहानी का नाम है क्या और कौन से स्टार्स इसमें हमें दिखाई दिए थे बताऊंगा। थोड़ा सा थम जाइए और गौर फरमाइए कि ऐसे दो कौन से सुपरस्टार से एक्शन लेकर स्क्रीन 80s के दौर में सिल्वर स्क्रीन पर आए थे। थोड़ा आप सोचिए और थोड़ा मैं बताऊंगा, लेकिन इस खूबसूरत से गाने के बाद।

वेलकम बैक है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी हिंदी पर बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिनेमा के कैलेंडर में ऐसी कहानी के बारे में जहाँ दो सुपरस्टार्स नजर आए थे जिनके नाम है राजेश खन्ना साहब और जितेंद्र। एक साथ ये दो बड़े नाम स्क्रीन पर आए तो फैंस वैसे ही उत्साहित हो गए। कहानी का नाम था मकसद। कहानी ने तहलका मचा दिया था अपने ही दौर में। साथ ही स्क्रीन पर ग्लैमर का तड़का लगाया श्रीदेवी और जया प्रदा ने। 80 का वो टाइम था जब मल्टी स्टारर फिल्म्स का मतलब होता था फुल पैसा वसूल। और ये मल्टी स्टारर कहानी ऐसी थी, चार बड़े स्टार्स, चार बड़े नाम, दो एक्शन हीरोज और दो उस दौर की ऐसी हीरोइंस जिनको हर कहानी में देखना पसंद किया करते थे फैंस। अब देखिए, चार बड़े बड़े नाम हो, मल्टी स्टारर कहानी का दौर हो तो फुल पैसा वसूल तो होगा ही। तो 80 के दौर में मकसद कहानी ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। बॉस की बजट से पार छप्पड़ फाड़ कमाई करते नजर आए और सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचा दी। बात करेंगे इस कहानी के गानों के बारे में भी, लेकिन इन गानों की चर्चा करने से पहले सुना देता हूँ एक और खूबसूरत सा ट्रैक। ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM को चढ़ते हैं।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। FM कुछ हटके।

चलिए सिनेमा के कैलेंडर में कहानी का नाम आपको बता ही चुका हूँ और यहाँ पे अब फिल्मी गलियारों में इसी कहानी के गानों की अगर बात करो, 80 का म्यूजिक मतलब रिदम, डांस और एनर्जी। फिल्म के गाने उस जमाने के टिपिकल डांस नंबर से भरे हुए, जहाँ स्टेज और कॉस्ट्यूम्स, मूव्स, सब कुछ ग्रैंड होता था। और वो डिस्को आया जहाँ गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि डांस फ्लो के लिए बनाए जाते थे। जहाँ इन गानों की अगर बात की जाए, ओए ओए तिरछी टोपी वाले, आज फिर तुम पे प्यार आया, घोरी फेरे अंग अंग में, और एक और खूबसूरत गाना, प्यार तुमने किया ना याद रहा। ये गाने ऐसे थे जो इतने ज़्यादा हिट रहे थे बॉस की मकसद कहानी ने सबको अपने गानों से, किरदारों से और स्टोरी लाइन से हिला डाला। बात करें इस कहानी के बारे में तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया और टीवी पर बार बार दिखाई जाने वाली फिल्मों में शामिल रही कहानी। 80 के मसाले एंटरटेनर्स के फैंस हो तो मकसद डेफिनेटली आपको याद होगी, और अगर नहीं देखी तो दोस्तों मैं बात यही कहूंगा कि बॉस यंगस्टर्स भी एक बार इस कहानी को देखिए, आपको एक अलग ही अनुभव होने वाले कहानी देख करके 80s के सुपरस्टार्स और इस गानों के धमाल के साथ। बाकी ऐसी भी चर्चा करूंगा, उससे पहले कॉन्टैक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

हाँ जी, वेलकम बैक है जी एक बार फिर से मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। जहाँ दोस्तों आज हमने सिनेमा के गलियारों में बहुत ही चर्चाएं करी, आने वाली कुछ कहानियों के बारे में, तो कुछ स्टार्स के ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो कि 2026 को फुल धमाल बना देने वाले हैं। तो वहीं सिनेमा के कैलेंडर में करी हमने मकसद कहानी की बात, जहाँ इस मकसद कहानी है सुपरस्टार्स यानी मल्टी सुपरस्टार कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर ग्रैंड ओपनिंग करी और क्लोजिंग होते होते भी अच्छा खासा वक्त लगा, क्योंकि कहानी तो लंबे अरसे सिल्वर स्क्रीन पर तो लग रही और टीवी पर भी लोग इसको बार बार देखना पसंद भी किया करते थे। सिनेमा के गलियारों में ऐसी और भी चर्चाएं और सबके लाता हुआ कुछ नई कहानियों के बारे में, तो उसकी प्लेटफॉर्म की स्ट्रीमिंग रिलीजिंग ट्रेलर टीजर के बारे में और सिनेमा के कैलेंडर की कुछ और चर्चाएं की और कौन कौन सी कहानियां जिनको रिवाइव किया जाए। तो यार वो दौर एक ऐसा लगता है कि यार काश उस दौर की कहानियों को फिर से सिल्वर स्क्रीन पर दिखाना शुरू किया जाए तो क्या होगा, बताऊंगा ऐसी और भी चर्चा, लेकिन आज नहीं, अवश्य मुलाकात होगी कल के दिन। सेम टाइम सेम जगह मुठेर बातें, तब तो सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM के चक्के।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है।

0: बादशाह।
1: Let's go।
2: हर इंसान का जन्म एक कहानी के साथ होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी कहानी खुद लिखने का हौसला रखते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नरकोटा में जन्मी बचेंद्री पाल एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से आती थी। ना कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, ना कोई बड़ी फैसिलिटीज, और ना ही ये सोच कि मेरी टी हिस्ट्री बनाएगी। गांव में लड़कियों के लिए जिंदगी एक ही रोड मैप पर चलती थी, पढ़ाई थोड़ी सी, शादी, घर गृहस्थी। लेकिन बचेंद्री के लिए पहाड़ सिर्फ बैकग्राउंड नहीं थे, वो उनका सपना बन चुके थे। स्कूल जाते हुए जब वो हिमालय की बर्फ की ढकी हुई चोटियों को देखती थी तो उनके मन में एक अजीब सी फीलिंग होती थी, डर भी, रिस्पेक्ट भी, और एक साइलेंट चैलेंज भी, मैं तुम तक पहुंचूंगी। उस टाइम उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये सपना उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा, और फिर बनी इंडिया की पहली लेडी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और इसी के साथ साथ उन्होंने क्रिएट करी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री। कौन कौन सी उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आए और क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, सब के बारे में करेंगे बात, मगर इस गाने के बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: वॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: ओ मेरी महबूबा,
3: अरे रास्ता रास्ता देखो आ मेरी लड़ी है।
2: महबूबा महबूबा,
3: अरे रास्ता।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जब भी कोई इंसान नॉर्मल से अलग सोचता है तो उसे सबसे पहले गलत कहा जाता है। अगर कोई लड़की ऐसा सोच ले तो बवाल खड़ा हो जाता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और आज हम लोग बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट पर सबमिट करने वाली बचेंद्री पाल की। कॉलेज के टाइम पर बचेंद्री एक ट्रैकिंग प्रोग्राम में शामिल हुई थी। बस वही मोमेंट था जहां उन्होंने डिसाइड किया माउंटेनियरिंग इज नॉट अ हॉबी, ये मेरी कॉलिंग है। लेकिन जैसे ही ये बात घर और सोसाइटी तक पहुंची क्वेश्चंस शुरू हो गए। लड़की हो ये सब क्यों, पहाड़ों पर सिर्फ मर्द जाते हैं, क्या मिलेगा ये सब करके। तो ऐसे कुछ सवाल थे जो कि उनके सामने आके खड़े हुए। फिर उसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अलग, सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो और फ्यूचर बिल्कुल अनक्लियर। फिर भी बचेंद्री पाल ने पीछे ना हटने का फैसला किया। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया जहां उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं अपनी औकात प्रूव करनी थी, वो भी हर दिन। हैवी बैग्स, एक्सट्रीम कोल्ड, फिजिकल पेन, लेकिन सबसे मुश्किल था लोगों को गलत प्रूव करना। और वहीं से एक बात तो क्लियर हो गई थी, ये लड़की इतनी इजीली क्विट नहीं करेगी। और उन्होंने ये चीज साबित करके दिखाई। और आगे उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे उन्होंने मौत का सामना किया, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। फिलहाल आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।
1: अलफला इश्क़ के दी बूटी

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जहां या तो आप टूट जाते हो या हिस्ट्री बन जाते हो। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं बचेंद्री पाल की। साल 1984, इंडियन एवरेस्ट एक्सपेडिशन, माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे ऊंचा चैलेंज। एक रात अचानक मैसिव एवलांच आया, कैंप्स तबाह हो गए, कई लोग बुरी तरह इंजर्ड हुए, कुछ अपनी जान तक खो बैठे। हर तरफ डर था, टीम का मोराल कंप्लीटली डाउन हो चुका था, डिसीजन ऑलमोस्ट फाइनल था, मिशन अबॉर्ट। लेकिन उस केओस के बीच में बचेंद्री पाल का मन एक ही बात कह रहा था, यहां तक आए हैं, अब नहीं रुक सकते। ठंड से उंगलियां सुन हो रही थी, ऑक्सीजन कम हो रही थी, हर स्टेप जिंदगी और मौत के बीच था। और फिर 23 मई 1984, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। उस पल सिर्फ एक चोटी कॉन्कर नहीं हुई थी, सोच, डर और स्टीरियोटाइप्स भी हार गए थे। और ऐसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट को यह दिखा दिया कि कोई भी चीज कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, उस पर भी फतेह हासिल की जा सकती है। और आगे उनकी लाइफ का सफर कैसा चला, करेंगे इसके बारे में बात। मगर फिलहाल आप सभी के लिए गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

सच्ची जीत वही होती है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए भी रास्ता बनाए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और हम बात कर रहे हैं आज बचेंद्री पाल की, इंडिया की पहली वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करी। एवरेस्ट के बाद बचेंद्री पाल एक नेशनल हीरो बन चुकी थी। अवार्ड्स मिले, रिस्पेक्ट मिली, पहचान मिली, लेकिन उन्होंने आराम करना चूज नहीं किया। उन्होंने सोचा अगर मैं कर सकती हूं तो और लड़कियां क्यों नहीं। उन्होंने मल्टीपल ऑल वुमेन एक्सपेडिशंस लीड किए, 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स, इंडो नेपाल वुमेन एक्सपेडिशंस, गंगा रिवर राफ्टिंग जैसे डेंजरस मिशंस। उनका फोकस क्लियर था, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एडवेंचर, जो कि किसी ने सोचा तक नहीं था। वो सिर्फ माउंटेन्स नहीं चढ़ा रही थी, वो लड़कियों के अंदर एक उम्मीद जगा रही थी, उनके अंदर का डर तोड़ रही थी। आज बचेंद्री पाल टाटा ग्रुप के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान अब भी वही है, एक पाथ ब्रेकर की। और आगे कैसे उनका नाम एक पूरा लेजेंड बन गया, करेंगे इसके बारे में बात। मगर फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो टिकट कटवा लेना।

हिस्ट्री सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स में नहीं होती, कुछ हिस्ट्री लोगों के दिमाग में लिखी जाती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की पहली लेडी जिन्होंने एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी। उनका नाम है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का एवरेस्ट पर पहुंचना सिर्फ एक इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं था, वो एक सिग्नल था हर उस लड़की के लिए जिसे कहा गया था ये तुम्हारे बस का नहीं है। जब उन्होंने नेशनल फ्लैग एवरेस्ट की चोटी पर लगाया, उस वक्त सिर्फ हवा तेज नहीं थी, सालों पुरानी सोच भी हिल रही थी। वो लड़की जो एक गांव से निकली थी, आज दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़ी थी, और इस बात ने हजारों घरों में एक नया सवाल पैदा कर दिया था, अगर वो कर सकती है तो मेरी बेटी क्यों नहीं। एवरेस्ट के बाद बचेंद्री पाल ने स्पॉटलाइट को ईगो नहीं जिम्मेदारी समझा। उन्होंने अपनी पहचान को सीढ़ियां बनाया जिससे लोग और ऊपर चढ़ सके। वो स्कूल्स में गई, ट्रेनिंग कैंप्स और एक्सपेडिशंस के थ्रू लड़कियों को ये सिखाने लगी कि डर नॉर्मल है, गिरना अलाउड है, लेकिन रुक जाना ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ माउंटेनियर्स नहीं बनाए, उन्होंने डिसीजन मेकर्स बनाए, लड़कियां जो अपनी जिंदगी के चॉइसेस खुद लेती हैं। बचेंद्री पाल ने बार बार ये प्रूव किया कि लीडरशिप मसल से नहीं माइंडसेट से आती है। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो सिर्फ एवरेस्ट या मेडल्स या अवार्ड्स नहीं आते, याद आता है वो कॉन्फिडेंस जो उनकी कहानी सुन के लोगों के अंदर जागता है। वो एक लिविंग प्रूफ है कि सक्सेस का जेंडर नहीं होता, करेज को परमिशन की जरूरत नहीं होती, और बैकग्राउंड सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, डेस्टिनी नहीं। बचेंद्री पाल ने दुनिया को यह दिखाया है कि अगर आप अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते हो तो एक दिन लिमिट्स आपको पहचानने लगती हैं। हर पहाड़ बर्फ का नहीं होता, कुछ पहाड़ लोगों के सोच के होते हैं, और जो उन्हें पार कर लेता है वो सही में एवरेस्ट छूता है। तो मैं आज के शो को एंड करना चाहूंगा इस लाइन के साथ कि जो लोग अपने डर के ऊपर चढ़ जाते हैं वही दुनिया को ऊपर से देख पाते हैं। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलता हूँ यहाँ से, एंड आपको ये शो कैसा लगा ये भी बताइएगा। नंबर है 9654896896, और आगे आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं ये भी बताइएगा टेक्स्ट मैसेज करके या फिर व्हाट्सएप पर। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ 9654896896। फिलहाल मैं चलता हूँ यहाँ से और मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गाना है फ्रॉम द मूवी भाग मिल्खा भाग, और इसी गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड में। आपके साथ गीत हूँ और हम एक बिजनेस टाइकून की कहानी यहाँ पर अनप्लग करने वाले हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी कंट्री जहाँ मिठाई कोई लग्जरी नहीं, जहाँ हर गली हर शहर हर त्योहार की अपनी अलग मिठास है। यहाँ लड्डू है, बर्फी है, पेड़ा है, रसगुल्ला है, जलेबी है, और ऐसे देश में अगर आपसे कोई पूछे मीठा किसका, तो जवाब ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही आता है, नहीं नाम नहीं लेंगे अभी, क्योंकि आज का एपिसोड सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है, ये कहानी है हैबिट बनाने की, ये कहानी है सोच बदलने की, और ये कहानी है उस बिजनेस की जिसके प्रोडक्ट की शुरुआत किसी ने मांगी ही नहीं थी, फिर भी ये हर घर तक पहुंच गया। और आज मैं जिस बिजनेस स्टोरी को खोलने वाली हूँ वो सिर्फ नंबर्स की नहीं है, वो इमोशन की है, कल्चर की है और मार्केटिंग जीनियस की है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके आने से पहले इंडिया ने कभी कहा ही नहीं कि ये हमें चाहिए, ना डिमांड थी, ना रिक्वायरमेंट, ना जरूरत, फिर भी आज वो प्रोडक्ट हर बर्थडे पर है, हर सक्सेस सेलिब्रेशन पर है, और कुछ मीठा हो जाए के डायलॉग के साथ जुड़ा हुआ है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है बिजनेस डिजाइन। अगर आज मैं आपसे पूछूं, जब रिजल्ट आता है, जब प्रमोशन मिलती है, जब रिश्ता पक्का होता है या दिल बस भारी हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? कुछ मीठा ना, और कुछ मीठा बोलते ही दिमाग में जो इमेज आती है वो किसी हलवाई की नहीं, वो किसी दुकान की नहीं, वो एक ब्रांड की होती है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए, ब्रांड वो नहीं होता जो आप बेचते हो, ब्रांड वो होता है जो लोग महसूस करते हैं, और यही काम इस बिजनेस ने किया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि जिस देश में माँ खुद बच्चों को कहती है ज्यादा मीठा मत खा, दांत खराब हो जाएंगे, डॉक्टर मना करते हैं, उस देश में एक स्वीट प्रोडक्ट को हर उम्र, हर इमोशन, हर ओकेजन से जोड़ देना आसान नहीं था, और फिर भी इस ब्रांड ने हार नहीं मानी। आज मैं जिस कहानी को अनप्लग करने वाली हूँ वो सिर्फ सक्सेस की नहीं है, वो फेलियर, फियर, बैकलैश, क्रिटिसिज्म और कमबैक की कहानी भी है। एक ऐसा टाइम आया जब लोगों को इस ब्रांड के नाम से डर लगने लगा, जब सेल्स 30% गिर गई, जब ट्रस्ट हिल गया, लेकिन जो कमबैक हुआ वो आज बिजनेस स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है। और यही वजह है कि आज का ये एपिसोड सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये लर्निंग है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, या अगर आप ये समझना चाहते हैं कि प्रोडक्ट नहीं परसेप्शन कैसे बिकता है, तो ये कहानी आपके लिए है। तो अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके। और एक सवाल पर मैंने आपको छोड़ा था कि अगर स्वाद ही चाहिए तो नशा क्यों। ये सवाल छोटा था लेकिन इसका असर इतना बड़ा हुआ कि इसने एक समाज की आदत बदल दी, एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी और एक नाम को अमर बना दिया। तो चलिए अब मैं आपको उस इंसान से मिलवाती हूँ जिसने ये सवाल पूछा, और अब वक्त है नाम को रिवील करने का। इस कहानी की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी में, एक ऐसा दौर जब शराब पीना नॉर्मल नहीं बल्कि जरूरत बन चुका था। इतना ज्यादा कि कहा जाता है हर 10 में से 5 लोग शराब की वजह से अपनी जान गंवा रहे थे। और इसी दौर में एक इंसान था जो ये सब देखकर परेशान था। न वो राजा था, न कोई साइंटिस्ट, न कोई बड़े घराने से, वो बस एक ऑब्जर्वेंट इंसान था। उसका नाम था जॉन कैडबरी। हाँ, वही कैडबरी। लेकिन रुकिए, आज हम जिस ब्रांड को जानते हैं वो उस वक्त चॉकलेट ब्रांड नहीं था। जॉन कैडबरी ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो चॉकलेट्स बनाएंगे या दुनिया का सबसे पॉपुलर स्वीट ब्रांड खड़ा करेंगे। जॉन कैडबरी का विजन बिजनेस नहीं, सोशल चेंज था। जॉन कैडबरी ने लोगों से लड़ाई नहीं की, उन्होंने लोगों को जज नहीं किया, उन्होंने बस सवाल पूछे। उन्होंने उन लोगों से बात की जो शराब के बिना रह नहीं पाते थे और उनसे पूछा, आप शराब क्यों पीते हो? आंसर्स चौंकाने वाले थे। लोगों ने कहा, हमें इसका टेस्ट पसंद है, यह हमें खुश करता है, इसका फ्लेवर यूनिक है। नशा रीजन नहीं था, टेस्ट रीजन था। यहाँ पर जॉन कैडबरी ने वो इनसाइट पकड़ ली जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। प्रॉब्लम एडिक्शन नहीं थी, प्रॉब्लम अल्टरनेटिव की थी। जॉन कैडबरी ने सोचा, अगर मैं लोगों को शराब से भी ज्यादा टेस्टी या ज्यादा सेटिस्फाइंग या हार्मलेस ड्रिंक दे दूं तो क्या लोग शराब छोड़ देंगे? ये सवाल रिस्की था, मार्केट अनसर्टेन थी, फेलियर का चांस बहुत बड़ा था, लेकिन विजन क्लियर था। 1821 में जॉन कैडबरी लेकर आए हॉट चॉकलेट मिल्क, और यहीं से कैडबरी नाम की जर्नी शुरू हो जाती है। ये ड्रिंक सिर्फ ड्रिंक नहीं थी, ये एक रिप्लेसमेंट थी, और रिप्लेसमेंट हमेशा रेवोल्यूशन लाता है। लोगों को टेस्ट मिला, कंफर्ट मिला, हैबिट शिफ्ट हुई। जो लोग दिन में कई बार शराब पीते थे, अब वही लोग दिन में कई बार हॉट चॉकलेट मिल्क पीने लगे। बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया, डिमांड बढ़ गई, कैडबरी का नाम पहचाना जाने लगा। जॉन कैडबरी ने 16 से ज्यादा ड्रिंक्स लॉन्च की, ब्रांड ग्रो कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एंट्री होती है जॉन कैडबरी के बेटे की, एक ऐसा इंसान जिसने अपने पिता का बिजनेस देखा, समझा और एक बात महसूस की, ये बिजनेस फॉरएवर नहीं चलेगा। और उसका नाम था जॉर्ज कैडबरी। और यहीं से ये स्टोरी एक नए मोड पर आ जाती है। जॉर्ज कैडबरी ने सिर्फ बिजनेस इनहेरिट नहीं किया, इन्होंने विजन इनहेरिट किया, लेकिन एग्जीक्यूशन पूरी तरह से अलग था। एक दिन हॉट चॉकलेट को ऐसे ही छोड़ देने पर जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, वो डेस्टिनी थी। लेकिन वो क्या था, क्या देखा जॉर्ज कैडबरी ने, कैसे एक थिक क्रस्ट दुनिया का सबसे फेमस चॉकलेट में बदल गया, इसका जवाब मैं आपको दूंगी। गाना तो सुन ले पहले, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। और अभी थोड़ी ही देर पहले मैं एक सवाल पर आपको छोड़ गई थी। सवाल था एक एक्सीडेंटल थिक क्रस्ट कैसे दुनिया की सबसे फेमस चॉकलेट बन गई। लेकिन उस मोमेंट तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सक्सेस एक दिन में तो नहीं बनेगी। आज जब हम कैडबरी डेयरी मिल्क कहते हैं तो हमें लगता है ये हमेशा से सक्सेसफुल रही होगी, लेकिन सच ये है कि कैडबरी की जर्नी स्मूथ नहीं थी। ये स्टोरी है एक्सपेरिमेंट्स, पेशेंस और जेनरेशनल थिंकिंग की। कैडबरी की शुरुआत कोई चॉकलेट फैक्ट्री से नहीं हुई। 1824 में जॉन कैडबरी ने एक छोटी सी दुकान खोली थी जहाँ वो बेचते थे कोकोआ, ड्रिंकिंग चॉकलेट, हॉट बेवरेजेस। उनका फोकस प्रॉफिट नहीं था, उनका फोकस था हैबिट चेंज। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा वैसे वैसे चैलेंजेस भी आने लगे। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल थी, रॉ मटेरियल महंगा था और लोग नए टेस्ट के लिए तैयार तो थे लेकिन लॉयल नहीं थे। और यहीं से स्टोरी में एंट्री होती है नेक्स्ट जेनरेशन की, जॉर्ज कैडबरी। बिजनेस फैमिली में पैदा हुए लेकिन लग्जरी में नहीं। इनका बचपन डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी और ऑब्जर्वेशन से भरा था। इन्होंने बचपन में देखा बिजनेस कैसे ग्रो करता है, रिस्क क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों की साइकोलॉजी। जॉर्ज ने एजुकेशन के दौरान सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ी, इन्होंने लोगों को पढ़ा। इन्हें ये समझ आ गया था कि फ्यूचर सिर्फ ड्रिंक का नहीं सॉलिड इंडल्जेंस का है। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने सब बदल दिया। एक दिन हॉट चॉकलेट प्रिपरेशन के दौरान मिक्सर को ऐसे ही छोड़ दिया गया। टाइम बीता और जब जॉर्ज वापस आए तब इन्होंने देखा ऊपर एक थिक क्रीमी लेयर जम चुकी थी। नॉर्मली ये वेस्ट होता लेकिन जॉर्ज ने इसे फेंका नहीं, इन्होंने उस लेयर को ठंडा किया, तोड़ा और टेस्ट किया। और वही मोमेंट था जब उन्होंने सोचा ये ड्रिंक नहीं है, ये कुछ और बन सकता है। जॉर्ज कैडबरी ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए, मिल्क क्वांटिटी चेंज की, कोकोआ बैलेंस किया, टेक्सचर इम्प्रूव किया और धीरे धीरे जो बना वो थी कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट। ये चॉकलेट सिर्फ स्वीट नहीं थी, ये स्मूथ थी, रिच थी और इमोशनल भी। ये रेसिपी इतनी इम्पैक्टफुल थी कि आज भी नेस्ले, हर्षे, मार्स जैसे ब्रांड इसी फाउंडेशन को फॉलो करते हैं। इंडिया एक ऐसा देश था जहाँ मिठाइयों की कमी नहीं थी। लड्डू, बर्फी, पेड़ा, हलवा सब कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो क्वेश्चन था चॉकलेट यहाँ कैसे चलेगी। 1948 में कैडबरी ने इंडिया में एंट्री ली। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी लेकिन पावरफुल। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, हाई मार्जिन फॉर रिटेलर्स, ट्रस्ट बिल्डिंग। रिटेलर्स कैडबरी को प्रेफर करने लगे क्योंकि उन्हें प्रॉफिट दिख रहा था और धीरे धीरे कैडबरी इंडियन हाउसहोल्ड्स का हिस्सा बनने लगी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, प्रोडक्ट हिट था, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग था, ब्रांड ग्रो कर रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो साइलेंटली ग्रो कर रही थी, एक ऐसी प्रॉब्लम जो आगे जाकर कैडबरी को ऑलमोस्ट गिरा देगी। डॉक्टर और पेरेंट्स ये सब कैडबरी के खिलाफ एक वॉल बनाने वाले थे। क्या कैडबरी सिर्फ बच्चों की चॉकलेट बनकर रह जाएगी? क्या पेरेंट्स इससे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देंगे? और कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस ब्रांड को बचाएगी? और इसका जवाब मैं आपको दूंगी लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके हम बात कर रहे हैं कैडबरी ब्रांड की, कैसे एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट कैडबरी डेयरी मिल्क बन गया। हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी, लेकिन प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट जीतना दोनों बातें अलग होती हैं। इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सिर्फ टेस्ट काम नहीं आता दोस्तों, यहाँ नंबर्स बोलते हैं। अर्ली 90s कैडबरी का ब्रांड स्ट्रांग था, लेकिन सेल्स वीक हो रही थी। 1992 से 94 के बीच ऑलमोस्ट 50% सेल डिक्लाइन रिकॉर्ड थी। रीजन, डॉक्टर का प्रेशर, पेरेंट्स का फियर, चॉकलेट इज इक्वल टू कैविटी माइंडसेट। और याद रखिए, जब FMCG में सेल्स गिरती हैं तो रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। कैडबरी ने इमोशनल मार्केटिंग स्टार्ट की, रियल टेस्ट ऑफ लाइफ, और यहीं से नंबर्स ने डायरेक्शन बदली। 1994 सेल्स स्टैग्नेंट, 1996 +20% जंप, 1998 कैडबरी बिकेम मार्केट लीडर, और 2000 ओवर 65% मार्केट शेयर। मतलब इंडिया में बिकने वाली हर 10 चॉकलेट में से 6 से ज्यादा कैडबरी की होने लगी। इंडिया में मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, हर साल लैक्स ऑफ टोन्स चॉकलेट प्रोडक्शन, डेली करोड़ में यूनिट सेल होने लगी। डेयरी मिल्क बिकेम इंडियाज हाईएस्ट सेलिंग चॉकलेट ब्रांड। 2010 5000 करोड़ प्लस, 2020 के आसपास 10,000 से 12,000 करोड़ एनुअल बिजनेस। और ग्लोबल लेवल पर आप खुद सोचिए, कैडबरी कंपनी नहीं एक ब्रांड है, और इसकी पेरेंट कंपनी है मॉडलेज इंटरनेशनल। ग्लोबल रेवेन्यू $35 बिलियन। कैडबरी कॉन्ट्रीब्यूट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर, प्रेजेंस इन 50+ कंट्री। कैडबरी ने सिर्फ डेयरी मिल्क पर डिपेंड नहीं किया, डेयरी मिल्क सिल्क, फ्रूट एंड नट, बॉर्नविले, पर्क एंड फाइव स्टार, हर सेगमेंट का अलग प्राइस पॉइंट, हर प्राइस पॉइंट का अलग कस्टमर। फेस्टिव सीजन सेल जंप 25-30%। राखी, दिवाली, वैलेंटाइन, चॉकलेट ने मिठाई को रिप्लेस कर दिया। बॉस, कैडबरी ने ये समझा, इंडिया में चॉकलेट सिर्फ स्नैक नहीं इमोशन बननी चाहिए, इसीलिए एड्स में आई। क्रिकेट सेलिब्रेशन, फैमिली मोमेंट्स, ऑफिस सक्सेस, रिलेशनशिप, और हर इमोशन के साथ एक ही नाम, कैडबरी। जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, तब आया 2003 का क्राइसिस। वॉर्म कंट्रोवर्सी, 30% सेल ड्रॉप, ब्रांड की क्रेडिबिलिटी हिली, मार्केट डाउट में चली गई। क्या इतने बड़े ब्रांड का कमबैक पॉसिबल था? क्या कस्टमर फिर से ट्रस्ट बनाएंगे? और कौन सी स्ट्रेटेजी ने कैडबरी को दोबारा ऊपर उठाया? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन गाना सुनते हैं पहले। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। I don't wanna settle, you move this.

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड। हम बात कर रहे हैं कैडबरी ब्रांड के बारे में, और अब सवाल ये है, क्या एक बार टूटा हुआ ट्रस्ट फिर से जुड़ सकता है? 2003 के हम क्राइसिस की बात कर रहे थे। इस क्राइसिस के बाद कैडबरी के लिए सिर्फ सेल्स का इशू नहीं था, ये क्रेडिबिलिटी का एग्जाम था। सेल्स ऑलमोस्ट 30% गिर चुकी थी, फेस्टिव सीजन फेल हो रहा था, और मार्केट में सिर्फ एक ही बात थी, इस चॉकलेट पे भरोसा करें या नहीं। कैडबरी ने ब्लेम गेम नहीं खेला, इन्होंने सिस्टम चेंज किया, न्यू सील पैकेजिंग लॉन्च की, सप्लाई चेन इम्प्रूव की, रिटेलर्स को ट्रेनिंग दी, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड टाइट किए, और सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रखा। 2004 के एंड तक सेल्स रिकवरी स्टार्ट, 2005 के बाद मार्केट शेयर बैक टू 60% प्लस, 2010 के बाद इंडिया का नंबर वन चॉकलेट ब्रांड अगेन। कैडबरी ने एक बात समझ ली थी, प्रोडक्ट परफेक्ट हो सकता है पर ट्रस्ट को रोज अर्न करना पड़ता है, और इसी ट्रस्ट ने कैडबरी को सिर्फ चॉकलेट नहीं सेलिब्रेशन का सिंबल बना दिया। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी एक स्ट्रगल फेज में हो, तो ये कहानी हमें सिखाती है, आपका रिस्पॉन्स ही आपकी पहचान बनाता है। ब्रांड बड़ी बात नहीं होती, भरोसा बड़ी करेंसी होती है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड, जहां हम बात करते हैं ऐसी कहानियों की जो हमें एक असली एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। फिलहाल वक्त है मेरा आपसे इजाजत लेने का। आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

0: आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

सोचिए एक शहर जो कल तक जिंदा था, आज सिर्फ याद है। ना जल, ना आग, ना दुश्मन, बस एक रात और समुद्र। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा। और आज कल्चर कारवा की कहानी हमें लेकर जा रही है धनुषकोड़ी की तरफ। कुछ शहर वक्त से नहीं हारा करते, कुछ शहर समुद्र से हार जाते हैं। आज बात कर रहे हैं धनुषकोड़ी के बारे में। पहले आइए जानते हैं कि कहाँ है धनुषकोड़ी। धनुषकोड़ी तमिलनाडु के बिल्कुल कोने पर बसा था, जहां बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन एक दूसरे से मिलते हैं। यहीं से श्रीलंका सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। एक वक्त था जब धनुषकोड़ी रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, चर्च, मंदिर सब कुछ हुआ करता था, पर आज सिर्फ हवा, रेत और खामोशी। धनुषकोड़ी का पुराना लिंक रामायण से मिलता है। कहा जाता है कि रामायण के मुताबिक यहीं से राम सेतु का आरंभ हुआ। धनुषकोड़ी का मतलब है धनुष का अंत। यहीं से राम ने अपना धनुष तोड़कर समुद्र को शांत होने का संकेत दिया था। वो कहा है कि ये जमीन सिर्फ भूगोल नहीं, ये तो पुरानी कहानियों का मिलन है। पर आखिर धनुषकोड़ी की असली कहानी क्या है? इस कहानी को जानने के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: यात्रा
1: लोर हर वेले का
2: और जुड़ी बन और आप
1: सभी तोड़ जाट नू जायर ना चढ़ा दी नाग दिए बच्ची है माजे दिए माजे दी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

कभी आपने सोचा है, अगर आंगन बोल पाता तो शायद सबसे ज्यादा कहानियां वही सुनाता। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। आज हम बात कर रहे हैं आंगन के कॉन्सेप्ट के बारे में, आंगन और रोज की जिंदगी। इसी आंगन में माँ धूप में अचार मिलाती है, दादी गीली जमीन पर बैठकर दाल छाटती है, बच्चे गिट्टे कंचे स्टैपू खेलते थे, शादी हो या शौक आंगन सबका गवाह होता था। यहाँ कोई मेहमान अजनबी नहीं लगता था क्योंकि ये जगह ही ऐसी थी, ओपन वार्म एंड इंक्लूसिव। वो कहा है कि आंगन ने हमें सिखाया जिंदगी बंद कमरों में नहीं पलती। फिर धीरे धीरे इसके पीछे का साइंस एक ट्रेडिशन बन गया। अब बात कर ही रहे हैं कॉन्सेप्ट के बारे में तो थोड़ा साइंस भी जान लेते हैं। जो चीज सालों से हमें परंपरा लगती है अक्सर उसके पीछे साइंस खड़ी होती है। ठीक ऐसा ही कुछ आंगन के कॉन्सेप्ट के पीछे भी था। दरअसल आंगन टेम्परेचर को रेगुलेट करता था, गर्मी में ठंडक और सर्दी में सनलाइट देता था। और साथ ही अगर बात की जाए बरसात की तो कहा जाता है कि बारिश का पानी सीधा मिट्टी में जाता, इसलिए ना सीपेज ना गर्मी की मार, इन सारी चीजों से हमें आंगन ही बचाता था। और इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा, मिट्टी की सुगंध, खुला आसमान, ये सब मिलकर घर को हेल्दी बनाते थे। वो कहा है कि हमने जिसे रिवायत कहा वो प्रकृति का फॉर्मूला निकला। आंगन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो पूरी कहानी है। आंगन के पीछे की कहानी जानी, कॉन्सेप्ट जाना। अब बात करेंगे वापस आकर आंगन की एक और खासियत के बारे में। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

आंगन और बाती। एक घर को अगर किसी ने संभाला तो अक्सर वो काम आंगन में हुआ। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। माना जाता था कि आंगन कोई मामूली चीज नहीं था, आंगन महिलाओं की दुनिया का सेंटर था। यहीं बैठकर वो काम भी करती थी और सांस भी लेती थी। यहीं से रिश्तों की बातें निकलती थी, यहीं से परिवार की प्लानिंग होती थी। आंगन उनका ऑफिस भी था और उनका सेफ स्पेस भी। वो कहा है कि आंगन ने औरत को बंद नहीं किया, उसे खुला रहने का मौका दिया। आखिर इतना खास होने के बाद भी आज सवाल ये उठता है कि आंगन कहाँ गया। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि घर बड़े हो गए पर जगह छोटी हो गई। धीरे धीरे आंगन कहीं खोसा गया। फ्लैट्स आए, बैल्कनीज रह गई, पर बैल्कनी में वो बात नहीं जो आंगन में थी। आज हम धूप भी टाइम टेबल से लेते हैं और हवा भी फिल्टर करके। शायद इसलिए हम कनेक्टेड रहकर भी थोड़े अलग अलग लगते हैं। वो कहा है कि कंक्रीट के घर बने पर मिट्टी वाले फीलिंग कहीं छूट सी गई। कल्चर कारवा का ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आज अगर आंगन वापस आ जाए तो शायद घर थोड़ा और घर लगने लगे, और अगर जगह ना हो तो कम से कम यादें जिंदा रखिए। कल्चर कारवा का आज का सफर हमें एक ऐसी कहानी के पास ले आया, एक ऐसे कॉन्सेप्ट तक ले आया, जहां हमने ये जाना कि कितना जरूरी होता है एक घर का घर कहलाना, जहां सिर्फ लोग मायने नहीं रखते, जहां मायने रखता है आंगन भी। जिस घर में धूप मुस्कुराए, समझ लो वहां कभी आंगन था। कल्चर कारवा के आज के सफर में हमने बात की आंगन के कॉन्सेप्ट के बारे में। जानी आज इससे जुड़ी हुई कहानी, जाना इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और जाना इसके पीछे की साइंस। आंगन घर की सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि घर का एक हिस्सा रहा, जिसने एक मकान को घर बनाया। फिलहाल अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। कल्चर कारवा के इस सफर में कल फिर

से आऊंगी एक नई कहानी के साथ, एक नई याद के साथ, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

जाते जाते वीकेंड कुछ अच्छा सा ही चला गया, मेरा ही नहीं आप लोगों का भी गया होगा, बिल्कुल गया होगा, क्योंकि मौसम ही कुछ अच्छा हो गया था सैटरडे नाइट से ही। और सैटरडे को वो जो दिन में फोन बजा था सबका, माफ कीजिएगा सैटरडे को मैं आप सभी के साथ मिल नहीं पाया क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ही आता हूँ, तो सैटरडे को जो दिन में फोन बजा था करेंगे उसके बारे में बात। एंड स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब, वीकेंड कैसा गया? और फिर मैं एक और बात बोलूं तो मंडे कैसा गया? आई नो यार, मंडे को किसका मन करता है ऑफिस आने का, बस थके हारे आ जाते हैं, अपने आप को खींच के ले आते हैं ऑफिस में। और वैसे भी ये तो लंबा वाला वीकेंड था, 1 मई वर्ल्ड लेबर डे, और लेबर डे में भी हम जैसे मजदूरों को छुट्टी नहीं मिली थी। मैं आया था आप सभी से बात करने, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाने के लिए वीडियोस भेज रहे हैं ऋषिकेश से, खैर वो भी आप लोग वापस आ गए हैं, बट स्टिल यार मुझे ऐसा लगता है कि एंजॉय करना ना बनता है हर किसी का। तो देखो अब अगले 3 घंटे तक एंजॉयमेंट होने वाला है, खूब सारी बातें होंगी, मस्ती होगी। आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हो, फरीदाबाद से रिलेटेड कोई भी बातें करनी है वो भी आप मुझसे कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं एक और बात बोलूंगा कि देखो गर्मियों में, अब देखो गर्मियां पूरी पीक पे आने वाली है बस कुछ दिन में, क्योंकि अभी बारिश होगी इसलिए ठंडक है, नहीं तो गर्मी पीक पे आने वाली है। तो गर्मियों में एसी वर्सेस कूलर, इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है, तो करेंगे इसका पर्दाफाश। और साथ ही साथ शादी में बुलाया नहीं तो चाचा ने पूरे घर पे वेल्डिंग कर दी, कैसे गेट पे, पूरी गेट को वेल्ड करके बंद कर दिया, बोला आप खुलवाते रहो खुद से, तो ऐसा भी होता है, करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात। और अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है या फिर फरीदाबाद की कोई भी समस्या जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो नंबर है जी 9654896896। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: सफर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

लोगों के पास आया था वो अलर्ट जिसमें डर गए थे सब लोग. लाइक आई वाज स्टैंडिंग इन द मार्केट और मार्केट में मेरे साइड में एक आदमी खड़ा था, एकदम से उसका फोन बजा सैटरडे को दिन में दोपहर करीब करीब 11:30-12 बजे और बहुत तेज टैं टैं ऐसे करके आवाज आई और मुझे लगा इसका फोन फटने वाला है. फिर उसके बाद अचानक से मेरा फोन भी हुआ और जितने लोग खड़े थे सबका फोन बजने लग गया एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, ये क्या हो गया. स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर. मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड दिस वाज अ टेस्ट गोइंग ऑन जो कि कामयाब भी रहा क्योंकि इमरजेंसी अलर्ट का टेस्ट था और लोग बिल्कुल परेशान हो गए. कुछ लोग बड़े अमेजिंग मिले. बताए वहां पर जहां भीड़ में मैं खड़ा था वहां पर एक आदमी कह रहा भाई ये सरकार तो मार की दम लेगी. मैंने कहा भाई सरकार की क्या गलती, वो तो अपना काम कर रही है, इमरजेंसी अलर्ट भेजा आपको ताकि अगर कल को भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए जिसमें इमरजेंसी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है इन सिचुएशन ऑफ वॉर और मे बी एनी नेचुरल डिजास्टर, तो उस टाइम ये इमरजेंसी अलर्ट आएगा आपके पास कि तुरंत आप लोग बचिए, सबसे पहले अपने आप को बचाइए. तो जब ये अलर्ट आया उसके बाद लोगों की रिएक्शंस ऑनलाइन भी वायरल हो रहे हैं. ऑनलाइन लोग कह रहे हैं भाई मुझे लगा फोन अलर्ट जो हुआ है ना अब ये फटने वाला है क्योंकि ऐसा ही साउंड था. एंड आई नो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, डर तो लगा होगा. और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं देखो एक बहुत ही अच्छा कदम है जिसमें हम लोग पूरे इंडिया के लोगों के लिए उनकी स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य तो नहीं कहेंगे बट हाँ सुरक्षा के लिए कह सकते हैं, सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया भारत सरकार ने. और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मैं तो अलार्म लगाना ही भूल गया था, वैसे ही उठता हूँ 11:30 बजे तो सरकार के इस अलर्ट से उठ गया था. बट अभी मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है कि ये अलर्ट ने आपको डराया या फिर आप लोगों को पहले से ही पता था कि ये अलर्ट आने वाला है. क्योंकि जहां पर मैं खड़ा था वहां पर एक आदमी कह रहा था भाई ये तो 2 दिन से न्यूज में चल रहा है, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो. फिर मुझे लगा हाँ यार मैं कौन सी दुनिया में रहता हूँ क्योंकि मैं तो सबसे ज्यादा अपडेटेड रहता हूँ बट स्टिल मुझे नहीं पता था. चलिए छोड़िए अब बातें करते रहेंगे और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आई एम डन नहीं गाने का नाम है, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर. मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ. वापस आकर इस गर्मियों के बारे में बातें करेंगे क्योंकि गर्मी में बहुत सी चीजें हैं जो कि मिसकंसेप्चुअल है, मतलब हम लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है. क्या धारणा है उसको तोड़ेंगे मगर इस गाने के बाद.

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: हाँ। वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे क्लास तो पीती जा, सुन।

इतना प्यारा सा गाना और इतना प्यारा सा मौसम, मतलब ठीक है मौसम अच्छा ही तो है, बुरा कहाँ है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर सतिंदर सरताज की आवाज में था ये गाना उडारियां। और प्यारा मौसम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच में मौसम तो प्यारा हो ही जाएगा, क्योंकि देखो गर्मियां बढ़ने वाली है। उसको प्यारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग अपने अंदर घर के अंदर एसी चलाएंगे कूलर चलाएंगे, और इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद रहता है हमेशा से। कुछ लोग कहते हैं एसी अच्छा होता है और कुछ लोग कहते हैं एसी चलाने से ना जोड़ों में दर्द हो जाता है, और इसके ऊपर तो डिबेट हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो चलिए इस मिसकंसेप्शन को आज तोड़ देते हैं। और देखो एसी और कूलर कैसे काम करते हैं दोनों। देखो अगर मैं बात करूँ कूलर की, तो कूलर पानी के थ्रू, मतलब वो जो पानी चलता है फिर वो जाली पे पड़ता है, फिर उसके बाद हवा खींचती है उसको, तो बेसिकली हवा को ठंडा करता है, हवा को ठंडा रखता है करता है। और वहाँ पर अगर एसी की बात करें तो वो एक तरह से बंद लूप में हवा को बाहर, गर्म हवा को बाहर निकालता है और ठंडी हवा वापस अंदर फेंकता है। तो ये होता है एसी का काम। और बात करें अगर सेहत पर किसका असर ज़्यादा पड़ता है, तो कूलर की वजह से हवा में नमी हो जाती है और फिर उसके बाद नाक बंद हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, सिर दर्द और थकान भी हो सकती है। अब आपको नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं होगी, बट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और वही अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी में तापमान जो होता है, जो टेम्परेचर होता है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और हवा को साफ भी करता है एसी, क्योंकि उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर एसी का एक तो फ़ायदा है। और अगर बात करूँ संक्रमण की, मतलब बैक्टीरिया और ये इन्फेक्शन वगैरह की, तो कूलर में जो होता है, हम लोग जब कूलर चलाते हैं तो हवा में नमी भर जाती है, और नमी की वजह से फफूंद बन सकती है, बैक्टीरिया बन सकता है, और सांस की समस्या भी बढ़ सकती है। और यहाँ पर अगर एसी की बात करूँ तो फिल्टर की मदद से धूल, बैक्टीरिया और एलर्जी ये सब कम हो जाते हैं। और अगर बिजली की बात करूँ तो कूलर कम बिजली यूज़ करता है, वहीं पर एसी बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ करता है। और अगर पैसों की बात करें तो कूलर सस्ता मिल जाता है और एसी बहुत महंगा मिलता है। और किसके लिए बेटर है, मतलब कूलर किसके लिए बेटर है? कम बजट होता है कूलर का और बिजली बचाता है, और साथ ही साथ एसी की अगर बात करूँ तो जिन्हें सांस की समस्या है ना, उनको एसी ज़रूर लगवाना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ साथ वापस आकर बात करेंगे दूध और छाछ की, नहीं दही और छाछ की बात करेंगे, क्योंकि दही और छाछ दोनों ठंडी तो होती है, बट क्या ये सच में आपके लिए इफेक्टिव है गर्मियों में? करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गर्मियां ऑलमोस्ट अपने पीक पे आने वाली है, बस कुछ ही टाइम में। और जैसे ही गर्मियां बढ़ती है तो मम्मी कहती है, बेटा छाछ पी ले, बेटा दही खा ले, ठंडक रहेगी शरीर में। क्या ये सच है? इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था और रिसर्च में मुझे कुछ अलग चीज मिली। मतलब मैं खुद डॉक्टर नहीं हुआ, साइंटिस्ट नहीं हुआ, बट रिसर्च एज इन मैं R&D कर रहा था, मैं इंस्टाग्राम पे, मैं सोशल मीडिया पे, मैं इंटरनेट पे ढूंढ रहा था ये सब चीजें कि कितनी सच्चाई है इसके पीछे। तो मेरे सामने कुछ अजीब और गरीब फैक्ट्स आए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और यहां पर एक डाइटिशियन का मैं पैराग्राफ पढ़ रहा था एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। और इन डाइटिशियन ने बताया, देखो गर्मी शुरू होते ही दही और छाछ हम लोग इसको यूज करना शुरू कर देते हैं, हम सोचते हैं कि ठंडी तासीर होती है, लेकिन इनकी तासीर ठंडी नहीं होती। उन्होंने कहा, देखो जो ये डाइटिशियन है उनका कहना है कि देखो शरीर को ठंडक देने के लिए रात में भिगोए हुए काले किशमिश सुबह खाएं आराम से, ये आपके लिए बेटर है। मतलब दही और छाछ ठीक है आप लोग अगर खा रहे हो, इट्स ओके, बट इनकी तासीर ठंडी बिल्कुल भी नहीं होती। अब इतने सालों से खाते आ रहे हैं, हमारे दादा दादी के ज़माने से भी, उनसे भी पहले से लोग खा रहे होंगे। मतलब दादी के नुस्खे हैं ना ये कि गर्मी लग गई दही पी लो छाछ पी लो, ठीक है वो चीज़ हम लोग कंज्यूम करते रहेंगे, बट यहाँ पर डाइटिशियन ने बताया कि आप लोग इनके अलावा क्या खा सकते हो। तो उन्होंने बोला कि रात को भिगोए हुए काले किशमिश खा सकते हो आप लोग सुबह सुबह, और रोज़ शाम को आप सौंफ का शरबत पियो। मतलब पानी में सौंफ भिगो के रखो, जो पानी में सौंफ भिगो के रखोगे तो वो ठंडक देगा आपके शरीर में और एसिडिटी भी कम करता है। और उन्होंने बोला गुलकंद भी खाओ, पुदीना और धनिया की चटनी बनाओ। ये तो भाई मज़ेदार चीज़ है ना, पुदीना और धनिया की चटनी अगर हम सबके घर में बनती है ऑब्वियसली, बट अच्छी तो होती है। और इसी के साथ साथ नारियल पानी पियो और साथ में सब्जा के बीज भी आप खाना शुरू कर दीजिए। सब्जा के बीज पानी में भिगो के खा लो, मतलब पानी में भिगो दो और पानी पी जाओ, बहुत ईजी है। यही सब चीज़ें आपको फॉलो करनी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और इसी के साथ साथ रोज़ रोज़ ना नहाना भी ज़रूरी है। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महाराज

0: कश्यप कश्यप।
1: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
2: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
3: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाली भर के नड़ा

शादियों का सीजन चल रहा है बॉस, और शादी में अगर कोई दोस्त ना बुलाए कितना बुरा लगता है ना। और उससे भी बुरा तब लगता है जब एक ही दिन तीन तीन शादी के इनवाइट आ जाए, फिर ये लगता है कि यार कौन सी शादी में जाया जाए और कौन सी में ना जाया जाए। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। और अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप लोगों को किसी ने शादी में नहीं बुलाया तो आप लोग क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, नाराज होकर बैठ जाओगे। मगर यहाँ यूपी में एक आदमी ने अपने भतीजे के घर के गेट पर ही वेल्डिंग कर डाली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा वीडियो वायरल हुआ इसका। स्वागत है, खैर मैं स्वागत तो कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, इस आदमी का नाम, चलो नाम वगैरह छोड़ दे, व्हाट्स इन द नेम, यहाँ पर यूपी में शादी हुई और यहाँ पर एक लड़के ने अपने चाचा को शादी में नहीं बुलाया, जिससे चाचा नाराज हो गए। वैसे तो ये काम फूफा जी का होता है, मतलब शादी में फूफा जी नाराज हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर चाचा जी नाराज हो गए और चाचा जी ने घर आए और उनके पूरे गेट पर वेल्डिंग कर डाली और वेल्डिंग से पूरा गेट सील कर दिया और ताला भी जड़ दिया। तो भाई इसका पूरा वीडियो जब आया सामने, चाचा की हरकत के बाद ना विदाई के बाद दूल्हा दुल्हन 2 घंटे तक घर के बाहर बैठे रहे और फिर पुलिस ने दरवाजा खुलवाया। तो ये अलग ही टाइप का रिवेंज था, ऐसा रिवेंज नहीं लेना चाहिए। देखो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है उनके बीच में कुछ और भी बातें हुई हो सकता है उन्होंने सिर्फ ना बुलाया हो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, अब हम लोग तो सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। पर चाचा के मन में ऐसा क्या आया? ये तो खुराफाती आइडिया है ना कि घर के गेट पर वेल्डिंग कर डालो। और देखो मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ ना, तो आप लोगों को ये चीज़ ट्राई नहीं करनी अपने साथ, क्योंकि अगर आप लोग ट्राई करोगे खामखा और रिश्ते खराब होते हैं, तो ये चीज़ मत कीजिए। और अगर शादी में नहीं बुलाया तो क्या हो गया, मत जाना, मत करना बात, फिर उसके बाद क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलेंगे, बातें भी होती रहेंगी। और हम वापस आकर बात करते हैं नए टाइप के स्कैम के बारे में जिसका यूज सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, कैसे बताऊंगा मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी को टेंशन नहीं लेनी क्योंकि गाने का नाम है टेंशन। दिलजीत दोसांझ की आवाज में सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: है शाम जब तुम घर लौटते हो। माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशान,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो।

आप लोग आराम से घर बैठ के फोन चला रहे हो और फोन में चला रहे हो आप लोग फेसबुक। फेसबुक पे आपको दिखती है एक एड और उस एड में एक आदमी ने लिखा हुआ है कि 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट चाहिए, जिस इंसान के भी पास है मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं इसके 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। और वो 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट तो सभी के घर में होगा, आई गेस सबके घर में होगा कि नहीं होगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अब जो ये मैंने बात बोली इसी की तरह से, मतलब इसी चीज को यूज करके स्कैम कर रहे हैं स्कैमस्टर्स। क्या हुआ है, राजस्थान में हुआ, एक लेडी टीचर है, उनके साथ ऐसे ही हुआ। उन्होंने फेसबुक पर यह ऐड देखी कि 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट अगर आप दोगे तो उसके बदले 48 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। मतलब इतना महंगा बिक रहा है ये, अमेरिकन मार्केट में बिक रहा है। बस यहीं पर लालच करना गलत पड़ गया इनके लिए और इन्होंने गवा दिए 3.5 लाख रुपए। एक्चुअली में हुआ क्या, इनके पास नोट तो था और इन्होंने उस नंबर पर मैसेज किया, जिसके बाद ठगों ने उनसे बोला आप ना ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये अमेरिकन ऐप है, इस पर आप बेच सकते हो बहुत आसानी से और जो कमीशन बनेगा वो हमें दे देना। और उस ऐप को उन्होंने डाउनलोड किया और फिर उसके बाद उसमें पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए उन्होंने। अब कैसे पैसे ट्रांसफ़र करें ये तो पूरी खबर देखनी पड़ेगी, मतलब पूरी जांच पड़ताल भी हो रही है, पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। बट मैं ये बोलना चाहूँगा क्यों ऐसे लालच में पड़ना है, कौन खरीदेगा 5 रुपए के नोट को 48 लाख रुपए में? कोई नहीं खरीदेगा, 48 रुपए में भी नहीं कोई खरीदेगा। खैर खरीदने वाले खरीदते हैं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में एक और गाना, ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशान,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो।

0: चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: हाय,
1: सब लोग कह रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, बिल्कुल कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि डोमेस्टिक सिलेंडर भी महंगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.0

6 पर मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। कमर्शियल सिलेंडर वो सिलेंडर होता है जो नीले कलर का होता है और बड़ा सा होता है, 19 किलो का उसका वजन होता है, और वो सिलेंडर यूज होता है ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स पर, होटल में, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, ना कि घर के अंदर। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि ये अफवाहें ना फैलाएं कि डोमेस्टिक सिलेंडर भी महंगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, डोमेस्टिक सिलेंडर का जो रेट था वो वही है, मगर कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया गया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि एक आम आदमी की जेब पे तो उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं अनटिल अनलेस वो घर का खाना खाता है, और फर्क पड़ेगा होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर खाना मिलता है उधर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बट उसी के साथ साथ एक और बात बोलूँ कि देखो, जो लोग बाहर खाना खाते हैं ना उनकी जेब पर तो असर पड़ सकता है, क्योंकि बाहर मिलता है यही वाला सिलेंडर, मींस कमर्शियल सिलेंडर। तो अगर आप लोग भी होटल में जा रहे हैं, मैंने तो भाई होटल में देखा, होटल तो नहीं था वो, खैर ढाबा ही था, ढाबे में देखा उन्होंने तंदूर के ऊपर बड़ी सी हांडी रखी हुई है, उसी में सब्जी दाल वगैरह सब बना के रख रहे हैं वो ऑलरेडी। तो ये भी एक तरीका अपना रहे हैं लोग। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, और उन्हीं में से एक गाना के बाजी की आवाज़ में, के जनाब की आवाज़ में, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लाइक इट।
4: पंजाब।

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

अगर आप लोग आईपीएल देख रहे हो तो आप लोग अच्छे से वाकिफ हो गए उस प्लेयर से जो कि है 15 साल का और लंबे लंबे छक्के मार रहा है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और जो मैं बात कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी की। भाई ये लड़का अमेजिंग क्लास दिखा रहा है, और इस लड़के को अभी रिसेंटली किसी ने बोल दिया है कि ये तो एआई है। एआई तो सोच रहे हो, एआई का इतना ज़्यादा दौर चल रहा है कि लोग असली इंसान को भी इंसान समझने को तैयार नहीं है। तो ये बात बोली है जॉस बटलर ने, जो कि पहले राजस्थान से खेलते थे, और फिर उन्होंने बस ये बोला कि देखो मैंने जोफ्रा आर्चर को मैसेज किया और बोला कि कहीं वैभव सूर्यवंशी को इलॉन मस्क ने तो नहीं बना दिया क्योंकि भाई ये लड़का सच में बहुत ही अमेजिंग बैटिंग कर रहा है और छक्के तो निडर होके मारता भाई ये लड़का। और उसके बाद इसने 100 मारी 50 मारी, बहुत तेज। और यहाँ पर जोफ्रा आर्चर और जॉस बटलर इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन हुई है जो कि अब वायरल हो गई है। वो कह रही कि मैंने खुद से जोफ्रा आर्चर को मैसेज किया था और पूछा था ये एआई तो नहीं है, क्योंकि इसका जो बैट है वो एकदम से जादू करके जो छड़ी होती है ना उसकी तरह है, जहाँ घुमाए वहाँ चौका या छक्का तो बटोर ही लेता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, मतलब इस लड़के के लिए, वैभव सूर्यवंशी के लिए, बहुत ही अच्छा खेलता है ना? तो अगर आपका भी बच्चा क्रिकेट खेलता है तो उसके सपनों को रोकिएगा मत, या फिर कोई भी स्पोर्ट कोई भी पैशन वो फॉलो कर रहा है तो उसको रोकिएगा मत, क्या पता वो भी कुछ कमाल कर जाए। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक और गाना फरीदाबाद की लड़की की आवाज़ में, MC Square की आवाज़ में लाडो। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: स्टोरी।
1: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक यूआई का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

पैराडॉक्स की आवाज में था ये गाना, और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है जल्द ही। मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा सच में होने वाला है। कब होने वाला है बता देता हूं, 14 जून को अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में होने जा रहा है, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप बेसिकली अगर मैं बात करूं तो। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। इंडिया के जितने भी मुकाबले हैं स्टार्टिंग के, वो सारे के सारे सामने आ चुके हैं। 14 जून को होगा एजवेस्टन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 17 जून को इंडिया वर्सेस नीदरलैंड, 21 जून को होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, 25 जून को होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश ओल्ड ट्रेफर्ड में, और फिर 28 जून को होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो भी लॉर्ड्स के मैदान में। तो ये तो आ गया जी फिक्स्चर। और 14 जून को पहला मुकाबला है, 12 जून से शुरुआत होने जा रही है महिला T20 विश्व कप की, और हिंदी में बता रहा हूँ आप लोगों को और बता दूँ आपको पहला मुकाबला किसका होगा, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। तो जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उन सबको तो लग रहा होगा कि हाँ भाई अब तो कुछ मज़ा आने वाला है। तो जून में मज़ा ज़रूर आएगा, और फिर उसके बाद इंडिया के जो मेंस टीम है उनके भी मैचेस होंगे आने वाले टाइम में, और फिर वर्ल्ड कप भी तो आने वाला है ना जल्दी, अगले साल मतलब अगले साल है अभी। और सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या कोहली और रोहित खेलेंगे अगले साल वाला वर्ल्ड कप या फिर नहीं। देखो मैं तो देखना चाहता हूँ विराट कोहली को अगले साल का वर्ल्ड कप खेलते हुए, तो आप लोग भी शायद देखना ही चाहते होंगे। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, एक प्यारा सा गाना चला रहा हूँ, वापस आकर और भी बातें कर लेंगे। तो अभी ये गाना है मनिंदर भट्टर की आवाज में लारे, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

अगर आप लोग भी फरीदाबाद में रहते हैं तो आप लोग भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि बहुत सारे ऐसे चौक हैं जो अब जाम नहीं झेल पा रहे हैं, पीक आवर्स का ट्रैफिक नहीं झेल पा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सभी को याद होगा अगर मैं NID की बात करूं तो चिमनी बाई चौक सबने सुना हुआ है, और ये चिमनी बाई चौक पे अब जो ये बड़ा वाला गोल चक्कर बनाया ना, जिसे नमस्ते चौक कहने लग गए हैं लोग, तो यहाँ पर जब से ये बड़ा वाला गोल चक्कर बनाया तब से ट्रैफिक की जो समस्या है बहुत कम हो चुकी है। नहीं तो उससे पहले रेड लाइट थी, मुझे अच्छे से याद है, और एक छोटा सा गोल चक्कर हुआ करता था बीच में, उसके बाद तो इतना लंबा जाम लगा करता था कि लोग परेशान हो गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर बड़ा वाला गोल चक्कर बनाया गया, और ऐसा ही फरीदाबाद में बहुत सारी जगहों पर होता है, यानी कि पीक आवर्स पर जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम तो फिर लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। और अभी मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी आप लोग फरीदाबाद में कहीं ना कहीं होंगे और वहाँ पर आपको ट्रैफिक भी मिल रहा होगा। अगर मैं बात करूँ गुड़गांव से फरीदाबाद आने की, तो लोग जो भी गुड़गांव से फरीदाबाद आते हैं वो NIT 3 से बीच में से होकर जाते हैं। अब सोचिए उस रोड पर किसी का अगर घर है तो उन लोगों की क्या हालत होती होगी। पहले तो ठीक था बट अभी लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो चुका है। और मैं बात करूँ NIT 1 की तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और भी बहुत सारी जगह है। तो अब इन सभी जगहों पर FMDA यानी कि फरीदाबाद म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये सभी चौक चौराहों को फिर से रीडिज़ाइन करेंगी। कब करेंगी बताऊंगा इसके बारे में भी, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर एक गाना एंजॉय कीजिए। वापस आकर बात करते हैं फरीदाबाद की और भी चीज़ों के बारे में, और 4 महीने में काम शुरू होने की उम्मीद भी है। ये इसी उम्मीद के साथ एक गाना चलाता हूँ आप लोगों के लिए, केसरिया फ्रॉम द

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: यहाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: मेरे।
1: अभी थोड़ी देर पहले मैंने FMDA की फुल फॉर्म बताई, फरीदाबाद म्यूनिसिपल, माफ कीजिएगा, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज का नाम है। और ये अब टोटल 22 जगह चुन चुके हैं जहां पर जाम बहुत ज़्यादा लगता है और इन सभी जगहों पर काम शुरू होने वाला है अगले 4 महीने के अंदर। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड सर्वे शुरू हो चुका है, FMDA ने 22 जगह चुनी है। 22 जगह में सारी तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ कुछ जगह बता देता हूं। सेक्टर 10-12 के बहुत सारे पॉइंट्स हैं और फिर उसके बाद सेक्टर 14-15 की डिवाइडिंग रोड है, सनफ्लैग वाला चौक है, आप सबको पता होगा कितना ज़्यादा जाम लगता है वहाँ पर। और साथ ही साथ 16 सेक्टर का QRG के पास वाला जो चौराहा है वहाँ पर भी बहुत सारा जाम लगता है। और अगर मैं बात करूँ नहर पार की, तो नहर पार में आता है आपका अमृता हॉस्पिटल Gate No. 1 के पास वाला एरिया, और इसी के साथ साथ अमौलिक चौक है, खेड़ी रोड जंक्शन है, और उसी के बीच में आता है चंदीला चौक भी। तो इन सब जगहों पर काम शुरू कर दिया जाएगा आने वाले कुछ ही महीनों में, और सड़कें चौड़ी होंगी ताकि जितने भी रोड्स में ट्रैफिक है ना वो आसानी से आ जा सके। स्लिप रोड का निर्माण होगा और साथ ही साथ जो ट्रैफिक में मुड़ते हैं ना, मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ना है तो हम लोगों के लिए एक स्लिप रोड बनाई जाती है, बट मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा कुछ लोगों को राइट मुड़ना होता है और वो एक्सट्रीम लेफ्ट में चलते हैं, और जिन लोगों को लेफ्ट मुड़ना होता है वो एक्सट्रीम राइट में चलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए। ट्रैफिक रूल्स अगर हम लोग फॉलो करने लग जाए ना तो ट्रैफिक जाम आधे से ज़्यादा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए ऐसी और भी अपडेट्स रोज लेकर आते हैं, तो अभी भी लेकर आए हैं और एक गाना भी चलाऊंगा आप लोगों के लिए। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

सताता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लव।

से शाम हो गई और ऐसे ही मंडे भी खत्म हो गया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? भूला नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं द मोस्ट वांटेड मुंडा। यानी कि आज सुबह भी आया था फरीदाबाद की गलियों में, आप सभी का स्वागत किया था मैंने 10 से 11। तो कल भी सुबह फिर से मुलाकात होगी फरीदाबाद की गलियों से और उसमें हम लोग फरीदाबाद के बारे में बात करते हैं, फरीदाबाद की अपडेट्स देते हैं। और अगर आप लोगों को भी कोई शिकायत है फरीदाबाद में तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। 9654896896 ये है हमारा नंबर। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, रेडियो महारानी के नाम से सर्च कीजिए, बहुत इजीली मिल जाएंगे। दो आईडीज दिखेंगे आपको, 89.6 और एक सिंपल रेडियो महारानी। किसी पर भी आप मैसेज करेंगे हम लोग आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो अभी फिलहाल रेडियो महारानी से मुझे दीजिए इजाजत, मैं निकलता हूँ यहाँ से। मिलूंगा आप सभी से फिर से कल सुबह 10 से 11 और फिर शाम को 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके ये गाना आप सभी के लिए, और हाँ कहीं जाइएगा मत क्योंकि आ रही है गीत विद इश्क बाजीगर। तब तक के लिए आप सभी के लिए गुरु रंधावा की आवाज में ये मिक्स मैशअप गाना ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

किताबों के पन्नों में कैद रहते हैं। कुछ लफ्ज मोहब्बत की स्याही में डूब कर लिखे जाते हैं और कुछ कहानियां बस दिल से दिल तक पहुंचने के लिए जन्म लेती हैं। और अभी वही सफर शुरू हो गया है जहां फासले मिटते हैं और मोहब्बत की आवाज आपके कानों से होते हुए आपके दिल में उतरती है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। और ये खास सा जो सफर है, ये जो खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना, जहां हम सिर्फ शेरो शायरी नहीं सुनते बल्कि हम उन अल्फाजों में छुपी मोहब्बत को महसूस करते हैं, उस दर्द को समझते हैं जिनका इलाज सिर्फ एक आहा नहीं है, और उन हंसी को भी संजोते हैं जो किसी खास के नाम शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। तो आज फिर इस महफिल में मैं आपको ले चलूंगी उन शायरों की गलियों में जहां हर मोड़ पर एक एहसास खड़ा है, हर चौराहे पर एक मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है और हर धड़कन एक शेर बनकर आपकी रूह को छूने के लिए तैयार है। तो आज एक ऐसे ही शायर के बारे में बातें होंगी जिन्होंने इश्क को जिया था। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर वन, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन और माइनस हो जाएगा।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

वैसे अचानक से कोई ये सवाल आपसे पूछ ले, है इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो लीजिए पेश है पहला शेर और शुरुआत होगी आज उस खूबसूरत से शायर से जिन्होंने मोहब्बत को जिया, जिनकी मोहब्बत अधूरी रह गई लेकिन अमर भी हुई, और नाम है इनका साहिर लुधियानवी, जो हमारी हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है। और कहते हैं मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप वही है जो सिर्फ महसूस हो, जिसमें पानी की जिद ना हो, बस चाहने की ख्वाहिश हो। और शायद इसीलिए साहिर लुधियानवी की शायरी में हमें मोहब्बत एक सुकून और दर्द के साथ मिलती है। 1913 में लुधियाना में इनका जन्म हुआ। बचपन में पिता से अलगाव, जवानी में मोहब्बत की नाकामी और तन्हाई, इन सब ने उनकी कलम को एक ऐसा रंग दे दिया जो मोहब्बत के साथ साथ इंतकाम, समाज और इंसानियत के रंग भी समेटे हुए था। ये बहुत ही खास से शायर हैं और इनकी जो शायरी है, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये जिंदगी में भी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती ही है। और साहिर का नाम अगर मैंने लिया है तो अमृता का नाम ना है, ऐसा नहीं होगा। साहिर का इश्क अमृता प्रीतम के साथ अधूरा रह गया और ये सब जानते हैं, लेकिन इस अधूरेपन ने उनकी शायरियों को अमर कर दिया। मतलब यार ये शायरों की खास बात होती थी कि वो अपनी मोहब्बत बेशक अधूरी छोड़ दें लेकिन पन्ने जरूर भर दिया करते थे उसी मोहब्बत के नाम जो अधूरी रह गई। ऐसे ही इनके कुछ किस्से हैं जो बहुत ही खास हैं, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं इन्होंने जो लिखा है उस पर कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो ये परेशानी है, भाई अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी मत होना, ये पहली शर्त प्यार की होती है, ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन कितनी सीधी सी बात है ना, लेकिन दिल को आर पार चीर देने वाली बात है। साहिर की खासियत ही यही थी कि वो मोहब्बत को सिर्फ दिल और फूल में नहीं बांधते थे, बल्कि उसके पीछे का दर्द, समाज की बेरुखी और इंसान की मजबूरियां भी दिखाते थे। तो ऐसे ही कुछ बातें और ऐसे ही इनके कुछ किस्से मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन फिलहाल गाना सुनते हैं। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। और पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।

चित्रा की आवाज में है ये बहुत ही प्यारा सा गाना और एआर रहमान साहब ने इसको कंपोज किया है। लिरिसिस्ट है महबूब और फिल्म है बॉम्बे। और कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो लगता है कि आज के टाइम में बड़ा ही मुश्किल है यार ऐसे गानों को बनाना, जो उनमें फीलिंग्स होती हैं, जो उनमें वो कनेक्टिविटी होती है कि जो सीधा हमारे दिल तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद को इमेजिन करने लगते हैं उस गाने में। ऐसे गाने बड़े मुश्किल हैं आज के टाइम में बनने। खैर, इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और खासा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिल लुधियानवी साहब के बारे में बातें चल रही हैं। बहुत ही सीधी सी बात बोलते हैं लेकिन दिल को आर पार कर देती है ये बातें। और उनकी एक ना खास सी नज्म है जिसका नाम है ताजमहल। वो अगर आपने सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है उसमें। जहां उन्होंने शाहजहां के इश्क को सलाम करने की बजाय उनके इश्क की हकीकत पर सवाल उठाए हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगों से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे बज़्म-ए-शाही में गरीबों का गुजर क्या है। चलिए इस बात को आपको बहुत ही सरल सी भाषा में समझाती हूँ। साहिर जहाँ अपनी महबूबा से कहते हैं, ताजमहल तुम्हारे लिए मोहब्बत का एक निशान सही, तुम्हें इस खूबसूरत वादी से मोहब्बत ही सही, लेकिन मेरी महबूबा मुझसे कहीं और मिला करो, क्योंकि ये शाही महफिले गरीबों के लिए नहीं बनी है। जहाँ वो बादशाहत की ताकत के निशान है, वहाँ मोहब्बत की मासूम रूहों का जाना अच्छा नहीं होता। तुम्हें इस ताजमहल के पीछे छुपी हकीकत देखनी चाहिए। मतलब यहाँ उन्होंने ताजमहल को जो कनेक्ट किया है अपने इश्क से, वो बहुत खूबसूरत सी बात है, जिस बात पर कोई कभी सवाल ही नहीं उठा पाया। खैर, अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: वतन पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिर लुधियानवी के बारे में बातें चल रही हैं। साहिर की शायरी सिर्फ इश्क की तारीफ नहीं चाहती, वो मोहब्बत में ईमानदारी चाहते हैं, खामोशी में गहराई चाहते हैं। और वो कहते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये महज एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में मोहब्बत, तन्हाई और एक पूरे रिश्ते की कहानी लिखी गई है। आज के दौर में जब इश्क को दिखावे में जीने का चलन है, वहां साहिर हमें याद दिलाते हैं कि मोहब्बत का असली रंग खामोशी में है, वो जो सिर्फ दिल से महसूस की जाती है और शायद कभी पूरी नहीं होती। खैर, मैं इस बात को नहीं कहूंगी कि मोहब्बत वही असल है जो पूरी ना हो। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, आपका सिंपल पासवर्ड स्कैमर्स की इनकम स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो अब से अपने पासवर्ड बनाओ जैसे पकवान, ताकि स्कैमर्स ना पहुंचा सके आपको नुकसान।
2: सीरा सोरी, तुम्हें हो ना हो मंजूर, फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
1: कुछ हटके
3: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क बाजिया में ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM.

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोरदा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती है और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोरदा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई, दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे उनको कैसे प्यार हुआ, इसके बारे में बात होगी। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोरदा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है, और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोरदा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोरदा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोरदा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: के तले।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहाँ जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस रीयूज रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्क बाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्क बाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दिया गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बन जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन्हीं रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, केयर कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं इस ट्रैक को।

काफी आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़ें, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूँ। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाए। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों था पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इंसानियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: देखो आप मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे हाथ की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे हाथ की।
0: मुश्किल

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भेजा सरकार
1: ने। थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा अच्छा।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: मीठा सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: मोना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: हर है
1: जाल।

0: मुस्कुराइए,
1: हाँ पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अच्छा है, अच्छा है।
1: मस्त बहारों

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89

0: 6FM द्वारा जनहित में जारी।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

का दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान इन टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

जैसे हिलती है वैसे मत हिलाकर, लगे मुझे रहेगी रब से मिलाकर, बारी तेरी हार देना चंचला फर, माने तुझे पड़ा कि ये क्या खिला।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कोई भरोसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: ही है बस ऐसा पथ जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूँ। श्री राम सुखदास जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी दिन में, और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब हम कोई संकल्प नहीं करेंगे। मन करेगा तो करेगा, पर हम उसके संग नहीं चल देंगे, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो संकल्प पारमार्थिक संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, अब राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है। और मैं कहता हूँ भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रसगान का आरंभ यहीं से करते हैं, जोई जोई प्यारो करें।

प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे। यही ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है। और यही समर्पण जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे, और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

अमृत मोह सिंधु की धारा काढ़ दया कर कर्म ही पारा। रोगी वैद से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूं इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हों अति दीन महा दुख पावत लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना, क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें। ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है। लेकिन धाम में कैसे रहना है, साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहां की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। यहां तो एक ही विधि है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहां पर उपासक बनकर रहिए, यहां पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिही खेत ते तब ही अंकुर होए। और समय रहते चेत जाइए, सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं।